अपहगे कहो पंडित सूचा कवन ठाओ, जहां बैस हो भोजन खाओ रहाओ। जेहबा जूठी बोलत जूठा, कर्ण नेत्र सब जूठे, इंद्री की जूठ उतर सनाही, ब्रह्म अग्न के लूठे। अग्न पी जूठी पानी जूठा, जूठी बैस पकाया, जूठी करसी प्रोसन लगा, जूठे ही बैठ खाया। गोबर जूठा चौका जूठा, जूठी दीनी कारा, कह कबीर तेई नर सूचे, साची परी बिचारा। रामानंद जी कर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, कत जाइए रे कर लागो रंग, मेरा चेतना चले मन पयो पंग रहाओ। एक दिवस मन पही उमंग, कह चंदन चोवा बहु सुगंध, पूजन चाली ब्रह्म ठाए, सो ब्रह्म बतायो गुरमन ही माहे। जहां जाइए तह जल पखान, तू पूर रहो है सब समान, वेद पुराण सब देखे जोए, उहां तव जाइए जो इहां ना होए। सतगुर मैं बलिहारी तोर, जिन सगर बिकल ब्रह्म काटे मोर। रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुर का शब्द काटे कोट कर्म। बसंत बाणी नाम देव जी की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। साहेब संकट वै सेवक पजै, चिरंकाल ना जीवै दो को लज्जै। तेरी भगतना छोड़ो पावै, लोग हसै, चरण कमल मेरा ही रह बसै रहाओ। जैसे अपने तनह प्राणी मरन मांडै, तैसे संत जना

नारायण सो प्रसन्न होए ता सेवक नामा लोभ लहर अत निजर बजे काया डूबे केसवा संसार समुंदे तार गोबिंदे तार लै बाप बीठला रहाओ अनल बेड़ा हों खेव ना सकौ तेरा पार ना पाया बीठला हो दयाल सतगुर मेल तू मोको पार उतारे केसवा नामा कह हों तार पी ना जाना मोको बहां दहे बीठला सहज अवल धूड़ मणि गाड़ी चालती पीछे तिनका लेकर हागती जैसे पनकत थ्रू टिट हाँकती सर तोवन चाली लाडली रहाओ तोबी तोवे बिरा बिराता हर चरण मेरा मन राता पंत नाम देव रम रहया अपने भगत पर कर दया। बसंत बाणी रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद तुझे सुजनता कशु नाहे पहरावा देखे उपजाहे गर्भवती का नाही ठाओ तेरी गर्दन ऊपर लवे काओ तू काए गर्भ बावली जैसे पांदव खूंबराज तू तिस्ते खरी उतावली रहाओ जैसे कुरंक नहीं पायो पे

तेरी चाल, तेरी पुष्ट ऊपर चमक बाल। इस घर में है सो तू ढूंढ खाहे, और किसी के तू मत ही जाहे। अरहाओ चाकी चाटे चून खाहे, चाकी का चीथरा कहाँ ले जाहे। शीके पर तेरी बहुत डीठ, मत लकड़ी सोटा तेरी परे पीठ। कह कबीर भोग पले कीन, मत को मारे ईट टेम। राग सारंग चौब दे महला पहला, कर पहला एक ओंकार। सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर, अकाल मूर्ता जूनी सह भंगुर प्रसाद। अपने ठाकर की हम चेरी, चरण गहे जग जीवन प्रभ के हमें मारन बेरी। रहाओ पूरन परम ज्योत परमेश्वर, प्रीतम प्राण हमारे। मोहन मोहे लिया मन मेरा, समझ सो शब्द विचारे। मन मुख हीन होची मत झूठी, मन तन पीर शरीरे। जबकि राम रंगी लहराती, राम जपत मन तीरे। हाँ मैं छोड़ पई बैरागन, तब साची सुरत समानी। अकोल निरंजन स्यो मन मानिया, बिसरी लाज लुकानी। पूर्व वेख नाही तुम जैसे, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। हर कै नाम रती सुहागन, नानक राम पतारा। सारंग महला पहला, हर बिन क्यों रही है दुख व्यापै। जेहवा साधना फिकी रस बिन, बिन प्रभ काल संतापै। रहाओ जब लग दर्शना परसै प्रीतम, तब लग भूख प्यासी। दर्शन देखते ही मन मानिया, जल रस कमल बेगासी। ऊनव कनहर गरजै बरसै, कोकल मोर बैरागै। तरवर बिरख बिहंग भयंगम, कर पिर तन सोहागै। कुचर करूप कुनार को लखनी, तिरका सहज न जानिया। हर रस रंग रसन नहीं तृप्ति, दुर्मत दुख समानिया। आए न जावे ना दुख पावे, ना दुख दर्द शरीरे। नानक प्रभ ते सह सुहेली, प्रभ देखत ही मन तीरे। सारंग महला पहला, दूर नाही मेरो प्रभ प्यारा। सतगुर बचन मेरो मन मानिया, हर पाए प्राण आधारा। रहाओ इन बिद हर मिलिया वर कामन, तन सुहाग प्यारी। जात वर्ण कुल सह साचूका, गुरमत शब्द बिचारी। जिस मन मान अभमान ना तांकाओ, हिंसा लोभ विसारे। सहज रवै वर कामन पिर की, गुरमुख रंग सुवारे। जारो वैसी प्रीत कुटुंब संबंधी, माया मोह पसारी। जिस अंतर प्रीत राम रस नाही, दुबदा करम बिकारी। अंतर रतन पदार्थ हित कहो, दुरैना लाल प्यारी। नानक गुरमुख नाम अमोलक, जुग जुग अंतर तारी। सारंग महला चौथा, कर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद हर के संत जना की हम तूर। मिल सत संगत परम पद पाया, आत्म राम रया भरपूर। रहाओ सतगुर संत मिले शांत पाई है, किल विख दुख काटे सब दूर। आत्म ज्योत पई प्रफुलत, पुरख निरंजन देखिया हजूर। वड़े भाग सतसंगत पाई, हर हर नाम रहा भरपूर। अठ सठ तीर्थ मज्जन किया, सतसंगत पग नाए तूर। दुरमत बिकार मलीन मत होछी, हिरदा कसुद लागा मोहकूर। बिन कर्मा क्यों संगत पाई है, हम मैं ब्याप रहा मन चूर। हो दयाल कृपा कर हर जी, मांगो सतसंगत पग तूर। नानक संत मिलै हर पाई है, जन हर भेटिया राम हजूर। सारंग महला चौथा, गोविंद चरणन कौ बलिहारी। भव जल जगत न जाई तरना, जप हर हर पार उतारी। रहाओ हृदय प्रतीत बनी प्रभ केरी, सेवा सुरत विचारी। अन दिन राम नाम जप हृदय, सर्व कला गुणकारी। प्रभ अगम अगोचर रविया सर्व ठाई, मन तन अलख्या पारी। गुर कृपाल पए तब पाया, हृदय लख लखारी। अंतर हर नाम

सब करना किरत कर लिखी है। कर कर करता करे करे मनमुख मरिय गुरमुख तरिय नानक नदरी नदर करे पौड़ी। मनमुख दूजा परम है दूजा लुभाया कूड़ कपट कमाम दे कूड़ो वालाया पुत्र कलत्र मोहित है सब दुख सबाया जमदर बदे मारी है परमै परमाया मनमुख जन्म गवाया नानक हर पाया। श्लोक महला दूजा जिन वड्याई तेरे नाम की तेरते मन माहे नानक अमृत एक है दूजा अमृत नाहे। नानक अमृत मने माहे पाईए गुर प्रसाद तिन्नी पीता रंग स्यों जिनको लिखिया याद। महला दूजा कीता क्या साला ही है करे सोए साला है नानके की बाहरा दूजा दाता ना है करता सो साला ही है जिनकी तायाकार। दाता सो साला ही है जे सबसे दे आधार नानके आप सदीव है पूरा जिस पंडार वड्डा कर साला ही है अंतना पारावार पौड़ी। हर का नाम निधान है सेवे है सुख पाई नाम निरंजन उचरा पास्यो कर जाई। गुरमुख बाणी नाम है नाम हृदय वसाई मत पंखेरु वस होए सतगुरु ते आई नानक आप दयाल होए नामे लिवलाई। श्लोक महला दूजा तिस स्यों कैसा बोलना जे आपे जाने जान चीरी जाकी ना फिरै साहिब सो प्रवान। चीरी जिसकी चलना मीर मलक सालार ज्योतिष पावै नानका साई पलीकार। जिन्ना चीरी चलना हाथ तिना किशना है साहिब का फुरमान होए उठी कर ले पाहे। जेहा चीरी लिखिया तेहा हुक्म कमाहे कल्ले आवै नानका सदे उठी जाहे। महला दूजा सिफत जिन्ना को बख्शी है ऐसे ही पोतेदार कुंजी जिन को दितिया तिन्ना मिले पंडार। जय पंडारी हूं गुण निकलै ते की है प्रवान नदर तिन्ना को नानका नाम जिन्ना निशान पौड़ी। नाम निरंजन निर्मला सुनया सुख होई सुन सुन मन वसाई है बुझे जन कोई। बहद्या उठद्या ना विसरै साचा सच सोई भगता को नाम आधार है नामे सुखोई। नानक मन तन रव रहया गुरमुख हर सोई। श्लोक महला पहला नानक तुलिया तोल जे जियो पिछे पाईए इक सना पुजै बोल जे पूरा पूरा कर मिलै वड्डा आखण पारा तोल होर हौली मत्ती हौले बोल धरती पानी पर्वत पार क्यों कंडै तोले सुनियार। तोला मासा रतक पाए नानक पुछां दे पुजाए मूर्ख अंध्यां दी धात कह कह कहण कहान आप। महला पहला आखण औखा सुन औखा आखण जापी आख एक आख आख है शब्द पाख है अर्ध उर्द दिन रात। जे केहो होए ता केहो दिसै जापै रूप ना जात सब कारण करता करे काटे औ कट कट काट काटे औ कट कट थाप आखने औखा नानका आपना आख ना जापै आख पौड़ी। नाए सुनया मन रेसी है नामे सांत आई नाए सुनया मन तृप्ति है सब दुख गवाई नाए सुनया ना उपजे नामे वडे आई। नामे ही सब जात पत नामे गत पाई गुरमुख नाम ते आई है नानक लिवलाई। श्लोक महला पहला झूठ ना रागी झूठ ना वेदी झूठ ना चंद सूरज की भेदी झूठ ना यानी झूठ ना नाई झूठ ना मीहो वरे है सब थाई। झूठ ना धरती झूठ ना पानी झूठ ना पौने महेशवाणी नानक निगुरिया गुण नाही कोए मोहे फेरे है मोह झूठा होए। महला पहला नानक चुलिया सुचिया जे पर जाने कोए सुरते चुली ज्ञान की जोगी का जत होए। ब्राह्मण चुली संतोख की गिरही का सतदान राजे चुली नियाम की पढ़िया सच त्यान।
ਪਾਣੀ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਪਈ ਮੁਖ ਪੀਤੈ ਤਿਖ ਜਾਏ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਜਗਤ ਕਾ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਸਭ ਖਾਏ, ਪੌੜੀ ਨਾਇ ਸੁਣਿਆ ਸਭ ਸਿੱਧ ਹੈ ਰਿਧ ਪਿੱਛੇ ਆਵੈ, ਨਾਇ ਸੁਣਿਆ ਨਉ ਨਿਧ ਮਿਲੈ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਪਾਵੈ, ਨਾਇ ਸੁਣਿਆ ਸੰਤੋਖ ਹੋਏ ਕਵਲਾ ਚਰਨ ਤੇ ਆਵੈ, ਨਾਇ ਸੁਣਿਆ ਸਹਿਜ ਉਪਜੈ ਸਹਿਜੇ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਉ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ ਦੁੱਖ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਵਰਤਣ ਸੰਸਾਰ, ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਅੱਗੇ ਆਖੀਐ ਪੜ ਪੜ ਕਰੈ ਪੁਕਾਰ, ਦੁੱਖੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੁਖ ਨਾ ਨਿਕਲ।

जैसा करे कहावे तैसा ऐसी बनी जरूरत, होवे लिंग चिंग न होवे ऐसी कही है सूरत। जो उस इच्छे सो फल पाए ता नानक कही है मूर्त पौड़ी। सतगुर अमृत बिरख है अमृत रस फलिया, जिस प्राप्त सो लहै गुरसब्दी मिलिया। सतगुर कै पाणे जो चलै हर सेती रलिया, जम काल जोहे न सकई कर चानन बलिया। नानक बख्स में लाया न फिर गर्भ ना गलिया, श्लोक महला पहला। सच वर्त संतोख तीर्थ ज्ञान ध्यान इशनान, दया देवता खिमा जप माली ते मानस प्रधान। जुगत धोती सुरत चौका, तिलक करनी होए पाओ पाओ जुन नानका, विरला ता कोई कोए। महला तीजा नौमी नेम सच जे करे, काम क्रोध तृष्णा उचरे। दसवीं दसे द्वार जे ठाके, एकादशी एक कर जाने। द्वादशी पंच वसगत कर राखे, तौ नानक मन माने। ऐसा वर्त रही जय पांडे, होर बहुत सिख क्या दीजे। पौड़ी भुगत राजे रंग राय, संचय विखमाया कर कर हेत वधाए दे पर दर्प चुराया। पुत्र कलत्र ना विस है बहुप्रीत लगाया, वेखद्या ही माया तुहे गई पछता पछताया। जम दर बदे मारिय नानक हर पाया, श्लोक महला पहला। ज्ञान में हुना गावे गीत, भुखे मुला करे मसीत। मखटू होए कै कन पढ़ाए, फकर करे होर जात गवाए। गुरपीर सदाए मंगन जाए, ता कै मूल न लगिए पाए। काल खाए किश हथों दे, नानक राहो पछाणे से। महला पहला। मनो जे अंधे कूप, कहया बिरद ना जाननी। मन अंधे उंधे कवल, दिसन खरे करूप। एक कह जान कहया बुजन, ते नरसुर स्वरूप। एक ना नाद ना बेद ना गी रस, रस कस ना जान अंत। एक ना शुद्ध ना बुद्ध ना अकल सार, अखर का प्यो ना लहंत। नानक से नर असल खार, जे बिन गुण गर्भ करंत। पौड़ी गुरमुख सब पवित है, तन संपै माया। हर अर्थ जो खर्च दे, देंदे सुख पाया। जो हर नाम ते आए दे, तिन तोट ना आया। गुरमुखा नदरी आमदा, माया सुट पाया। नानक भगता होर चेतना आवई, हर नाम समाया। श्लोक महला चौथा। सतगुर सेवन सेवट भागी, सच्चा शब्द जिन्ना एक लिव लागी। ग्रह कुटाम मैं सहज समाधि, नानक नाम रते से सच्चे बैरागी। महला चौथा। गणत सेवना हो वई, कीता थाए ना पाए। शब्द साधना आयो, सच ना लगो पाओ। सतगुर प्यारा ना लगे मन ठिया वह जाए। जे एक विख अगाहां भरे, ता दस विखां पिछाहां जाए। सतगुर की सेवा चाकरी, जे चले सतगुर पाए। आप गवाए सतगुरु नो मिले, सहजे रह समाए। नानक तिन्ना नाम।

रहाओ। आपन देओ देहराय आपनो, आप लगावै पूजा। जल ते तरंग, तरंग ते है जल, कहन सुन कौ दूजा। आपै गावै आपै नाचै, आप बजावै तूरा। कहत नाम देओ तू मेरो ठाकरो, जन ऊरा तू पूरा। दास अनिन मेरो निज रूप, दर्शन निमख ताप त्रई मोचन। परसत मुकत करत ग्रह कूप रहाओ। मेरी बांदी भगत छिड़ावै, बांदै भगत ना छूटै मोहे। एक समय मोको गह बांदै, तौ फुन मोपै जवाब ना होए। मैं गुण बंद सगल की जीवन, मेरी जीवन मेरे दास। नाम देव जाके जी ऐसी, तैसो ताके प्रेम प्रगास। सारंग एको अंकार सतगुर प्रसाद, तै नर क्या पुराण सुन कीना। अनपामनी भगत नहीं उपजी, भूखे दाना दीना रहाओ। काम ना बिसरियो, क्रोध ना बिसरियो, लोभ ना छूट्यो देवा। पर निंदा मुक्ते नहीं छूटी, निफल पई सब सेवा। बाट पार कर मूस बिरानो, पेट भरै अपराधी। जेह पर लोग जाए अपकीर्त, सोई अविद्या साधी। हिंसा तो मन ते नहीं छूटी, जी दया नहीं पाली। परमानंद साध संगत मिल, कथा पुनीत ना चाली। शाड मानो हर बिमुखन को संग, सारंग महला पंजवा। सूरदास एको अंकार सतगुर प्रसाद, हर के संग बसे हर लोक। तन मन अर्प सर्बस सब अर्प्यो, आनंद सहज धुन चोक रहाओ। दर्शन पेख पे निर्भखई, पाए है सगले थोक। आन बस्त स्यों काज ना कछु है, सुंदर बदन्या लोक। श्याम सुंदर ताज आन जो चाहत, जो कुष्टी तन जोक। सूरदास मन प्रभ हथ लीनो, दीनो यो परलोक। सारंग कबीर जियो एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर बिनो कौन सहाई। मन का मात पिता भाई सुतबंता, हित लागो सब फन का रहाओ। आगे कहो किस तुल्हा बांध हो, क्या परवासा तन का। कहां बिसासा इस भांडे का, इतनक लागै ठन का। सगल धर्म पुन फल पावहो, तूर बांछो सब जन का। कह कबीर सुनोरे संतो, एहो मन उडन पंखेरू बन का। राग मलार चौप दे महला पहला, कर पहला एक ओंकार सतनाम। करता पुरख निर्भउ निर्वैर, अकाल मूर्ता जूनी सह भंगुर प्रसाद। खाना पीना हसना सौना, विसर गया है मरना। खसम विसार खुवारी कीनी, त्रिग जीवन नहीं रहना। प्राणी एको नाम ते आवो, अपनी पासेती कर जावो रहाओ। तुदनो सेव है तुझ क्या देव है, मांगे लेवे रह नहीं। तू दाता जिया सबना का, जिया अंदर जियो तुही। गुरमुख त्यावै से अमृत पावै, से ही सुचे हो ही। अहनिस नाम जपोरे प्राणी, मैले हच्छे हो ही। जेही रुत काया सुख तेहा, तेहो जेही देही। नानक रुत सुहावी साई, बिन नाम है रुत के ही। मलार महला पहला, करो बिनो गुरे अपने प्रीतम। हर वरे आन मिलावै, सुन कन कोर शीतल मन मोरा। लाल रती गुण गावै, बरस घना मेरा मन पीना। अमृत बूंद सुहानी ही आरै, गुरमोही मन हर सलीना रहाओ। सहज सुखी वर कामन प्यारी, जिस गुरबचनी मन मानिया। हर वर नार भई सुहागण, मंत्र प्रेम सुखानिया। अवगण त्याग भई बैरागण, आस्तर वर सोहाग हरी। सोग विजोग तिस कदे ना व्यापै, हर प्रभ अपनी कृपा करी। आवन जान नहीं मन निर्मल, आवन जान नहीं मन निचल। पूरे गुर की ओट गही, नानक राम नाम जप गुरमुख। तन सुहागण सच सही, मलार महला पहला। साची सुरत नाम नहीं तृप्ते, हों मैं करत गवाया। पर तन पर नारी रत निंदा, बिख खाई दुख पाया। शब्द चीन पै कपट ना छूटे, मनमुख माया माया। अजगर पार लदे अत भारी, मर जन्मै जन्म गवाया। मन भावै शब्द सुहाया, भ्रम भ्रम जोन भेख बहु कीने। गुर राखे सच पाया रहाओ। तीर्थ तेज निवार ना नाते, हर का नाम ना पाया। रतन पदार्थ पर हर त्यागया, जत को तत ही आया।
ਬਿਸ਼ਟਾ ਕੀਟ ਭਏ ਉਤਹੀ ਤੇ ਉਤਹੀ ਮਹੇ ਸਮਾਇਆ ਅਧਿਕ ਸਵਾਦ ਰੋਗ ਅਧਿਕਾਈ ਬਿਨ ਗੁਰ ਸਹਿਜ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਰਹਿਸ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰਾ ਖੋਜੀ ਉਪਜੈ ਬਾਦੀ ਬਿਨਸੈ ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਗੁਰ ਕਰਤਾਰਾ ਹਮ ਨੀਚ ਹੋਤੇ ਹੀਣ ਮਤ ਝੂਠੇ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨਹਾਰਾ ਆਤਮ ਚੀਨ ਤਹਾਂ ਤੂੰ ਤਾਰਨ ਸਜ ਤਾਰੇ ਤਾਰਨਹਾਰਾ ਬੈਸ ਸੁਥਾਨ ਕਹਾਂ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਥੋਂ ਅਪਾਰਾ ਅਲਖ ਨ ਲਖੀਐ ਅਗਮਾ ਜੋਨੀ ਤੂੰ ਨਾਥਾ ਨਾਥਨਹਾਰਾ ਕਿਸ ਪੈ ਦੇਖ ਕਹੋ ਤੂੰ ਕੈਸਾ ਸਭ ਜਾਚਕ ਤੂੰ ਦਾ ਤਾਰਾ ਭਗਤਹੀਣ ਨਾਨਕ ਦਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਉਰਤਾਰਾ ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਨ ਧਨ ਪਿਰਕਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਸਾ ਬਿਲਖ ਬਦਨ ਕੁਮਲਾਨੀ ਪਈ ਨਿਰਾਸੀ ਕਰਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ਬਿਨ ਗੁਰ ਭਰਮ ਭੁਲਾਨੀ ਬਰਸ ਘਨਾ ਮੇਰਾ ਪਿਰ ਘਰ ਆਇਆ ਬਲ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭਿਆਣ ਮਿਲਾਇਆ ਰਹਾਓ ਨਵ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਦਾ ਠਾਕਰ ਸਿਉ ਅੰਦਨ ਭਗਤ ਸੁਹਾਵੀ ਮੁਕਤ ਭਏ ਗੁਰਦਰਸ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਜੋ ਭਗਤ ਸੁਭਾਵੀ ਹਮ ਥਾਰੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਜਗ ਤੁਮਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹਉ ਤੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਇਆ ਬਹੁਰ ਨਾ ਪਵਜਲ ਫੇਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿਰਹਰ ਦੇਖ ਵਿਗਾਸੀ ਤਉ ਧਨ ਸਾਜ ਸਿੰਗਾਰੋ ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿਉ ਸੱਚ ਸਾਚੀ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਆਧਾਰੋ ਮੁਕਤ ਭਈ ਬੰਧਨ ਗੁਰ ਖੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਪਤ ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਲਾਰ ਪਰ ਦਾਰਾ ਪਰ ਤਨ ਪਰ ਲੋਭਾ ਹਉਮੈ ਬਿਖੈ ਬਿਕਾਰ ਦੁਸ਼ਟ ਭਾਉ

जिस गुर का शब्द रतने आचार रहाओ। दुख सुख दो सम कर जाने बुरा पला संसार, शुद्ध बुद्ध सुरत नाम हर पाई है ऐसा संगत गुर प्यार। हैन सलाह हर नाम प्राप्त गुरदाता देवनहार, गुरमुख सिख सोई जन पाए जिसनों नदर करे करतार। काया महल मंदिर घर हर का तिसमें राखी जोत्या पार, नानक गुरमुख महल बुलाई है हर मेले मिलनहार। मलार महला पहला घर दूजा एको अंकार, सतगुर प्रसाद पमणे पानी जाने जात, काया अगन करे निभरात जमै जी जाने जे थाओ, सुरता पंडिता का नाओ। गुण गोबिंद ना जानिए माए, अंडी ठग शिकैण न जाए, क्या कर राख वखाणिए माए रहाओ। ऊपर दर असमान पयाल क्यों कर कहिए देहो विचार, बिन जहवा जो जपै है आए कोई जाने कैसा नाओ। कथनी बदनी रह निप्रांत सो बूझे होवै जिस दात, अहन संतर रह लिव लाए सोई पुरख जे सच समाए। जात कुलीन सेवक जे होए ताका कहना कहो ना कोए, विसनाती सेवक होए नानक पणिया पहरै सोए। मलार महला पहला दुख विछोड़ा एक दुख भूख, एक दुख सगतवार जमदूत, एक दुख रोग लगै तन ताए, वैदना भोले दारू लाए, वैदना भोले दारू लाए, दर्द होवे दुख रह शरीर ऐसा दारू लगे ना बीर। रहाओ खसम सार किए रस भोग, तां तन उठ खलोए रोग, मन अंधे को मिले सजाए, वैदना भोले दारू लाए। चंदन का फल चंदन वास, मानस का फल घट मैं सास, सास गया काया टल पाए ता कह पाछे कोई ना खाए। कंचन काया निर्मल हंस, जिसमें नाम निरंजन अंस, दुख रोग सब गया गवाए, नानक छूटस सच है नाए। मलार महला पहला दुख महुरा मारन हर नाम, सिला संतोख पीसन हाथ दान, नित नित लेहो ना चीजे देह, अंतकाल जम मारे ठेह, ऐसा दारू खाहे गवार, जित खादे तेरे जाहे विकार। रहाओ राजमाल जोबन सब शाम, रथ फिरंदे दिसे थाम, देह ना नाओ ना होवे जात, उथे देहो एथे सब रात। साध कर समदा तृष्णा क्यो तेल, काम क्रोध अग्नि सो मेल, होम जग अर पाठ पुराण, ज्योत स्पावे सो प्रवाण। तप कागद तेरा नाम निशान, जिन को लिखिया हो निदान, से तनवंत दिसे कर जाए, नानक जननी तन्नी माए। मलार महला पहला बागे कापड़ बोले बैन, लम्मा नक काले तेरे नैन, कबू साहिब देखिया पैन, ऊंडा ऊंड चढ़ा समान, साहिब समरथ तेरे तान, जल थल डूंगर देखा तीर, थान थनंतर साहिब वीर। जिन तन साज दिए नाल खंब, आत तृष्णा उड़ने की डंज, नदर करे ता बंदा धीर, ज्यों विखाले त्यों वेखा वीर। ना हो तन जाएगा ना जाहेंगे खंब, पौने पानी अग्नि का संबंध, नानक कर्म होवे जपिए कर गुर पीर, सच समावे हो शरीर। मलार महला तीजा चौपदे कर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद निरंकार आकार है आपे, आपे परम पुलाए, कर कर करता आपे वेख है, जित पावे तित लाए। सेवक को यह वड्याई जा को हुक्म नाए, अपना पाणा आपे जाने गुर कृपा ते लही है, यह सख्त सेवा कर आवे जीवते अमर रही है। रहाओ वेद पढ़े पढ़ वाद वखाने, ब्रह्मा विष्णु महेशा, एह त्रै गुण माया जिन जगत भुलाया, जन्म मरण का सहिसा। गुर प्रसादी एको जाने चूके मनो अंदेसा, हम दीन मूर्ख अविचारी, तुम चिंता करो हमारी, हो दयाल कर दास दासा का, सेवा करी तुम्हारी। एक निदान देह तू अपना, अहनस नाम वखाणी, कहत नानक गुर प्रसादी बूझो,
ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਉਂ ਜਲ ਉੱਪਰ ਫੇਨ ਬੁਦਬੁਦਾ ਤੈਸਾ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰਾ ਜਿਸ ਤੇ ਹੋਵਾ ਤਿਸੈ ਸਮਾਣਾ ਚੂਕ ਗਿਆ ਪਾਸਾਰਾ। ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਜਿੰਨੀ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣਿਆ ਸੇ ਮੇਲੇ ਹਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਸੱਚੀ ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਜਨ ਰਾਤੀ ਸੱਚ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ ਸਦਾ ਸੱਚ ਹਰ ਵੇਖਦੇ ਗੁਰ ਕਹਿ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਏ। ਮਨ ਰੇ ਹੁਕਮ ਮਨ ਸੁਖ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਾ ਆਪਣਾ ਭਾਵਦਾ ਜਿਸ ਬਖਸੇ ਤਿਸ ਬਿਘਨ ਨਾ ਕੋਏ ਰਹਾਉ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਸਭਾ ਤਾਤ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਭਗਤ ਨਾ ਪਾਏ ਗਤ ਮੁਕਤ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੈ ਸੋਥੀਐ ਪਇਐ ਕਿਰਤ ਫਿਰਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਐ ਮਨ ਮਰ ਰਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਤਿਸਕੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ ਕਹਿਣਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਏ ਚੌਥੇ ਪਦਵਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੱਚੇ ਰਹੈ ਸਮਾਏ। ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਅਗਮਿਆ ਗੋਚਰ ਹੈ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝੀਐ ਸਬਦੇ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਤੂੰ ਹਰ ਹਰ ਦਰ ਸੋਭਾ ਪਾਏ। ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਬੂਜੈ ਜਿਸਨੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਗੁਰਬਿੰਦ ਦਾਤਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ਬਖਸੇ ਨਦਰ ਕਰੇ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਂਤ ਉਪਜੈ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਲਏ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲੈ ਨਾਉ ਪਾਈਐ ਹਰ ਨਾਮੇ ਸਦਾ ਸਮਾਏ। ਰਹਾਓ ਮਨਮੁਖ ਸਦਾ ਵਿਛੜੇ ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਮੈ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ ਸਿਰ ਮਾਰੇ ਜਮਕਾਲ। ਗੁਰਮਤ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾ ਵਿਛੜੈ ਅੰਧਨ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਸਭਨਾ ਕਰਤਾ ਏਕ ਤੂੰ ਨਿਤ ਕਰ ਦੇਖੈ ਵਿਚਾਰ ਇਕ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ ਬਖਸੇ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਹਰ ਹਰ

बरसै मेघ सखी कर पा होने आए, मोहे दीन कृपा निध ठाकर नवनिध नाम समाए रहाओ। अनक प्रकार भोजन बहु किए बहु व्यंजन मिष्टाए, करी पागसाल सोच पवित्रा हुन लावो पोग हर राय। दुष्ट बिदारे साजन रहसे एह मंदर कर अपनाए, जौ ग्रह लाल रंगी हो आया तौ मैं सब सुख पाए। संत सवाय ओट गुरपूरे तुर मस्तक लेख लिखाए, जन नानक कंत रंगीला पाया फिर दुख ना लाग आए। मलार महला पंजवा खीरा धार, बारक जब होता बिन खीरा रहन न जाई। सार संभाल माता मुख नीर तबो तृप्त गाई, हम बारक पिता प्रभदाता भूल बारक अनक लख बरिया, अनठौर नाही जय जाता रहाओ। चंचल मत बारक बपरे की सर्प अगन कर मेले, माता पिता कंठ लाए राखे आनंद सही तब खेल। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी तिस बारक भूख कैसी, नव निध नाम निदान ग्रह तेरा मन बांछ सो लैसी। पिता कृपाल आग्या है दीनी, बारक मुख मांग सो देना, नानक बारक दर्श प्रभ चाह मोहे हृदय बसै नित चरना। मलार महला पंजवा सगल विधि जो रिया हर करया, तजो सगलां देसा कार्य सगल अरंभ्यो घर का ठाकर का पारोसा। सुनिया बाजै बाज सुहावी, भोर भया मैं प्रेम मुख पेखे, गृह मंगल सोहलावी रहाओ। मनुआ लाए सवारे थाना पूछो संतां जाए, खोजत खोजत मैं पाहुन मिलियो भगत करो ने उपाए। जब प्रे आए बसे गृह आसन तब हम मंगल गाया, मीत सजन मेरे पय सुहेले प्रभ पूरा गुरु मिलाया। सखी सहेली पय आनंदा गुर कार्य हमरे पूरे, कहो नानक वर मिलिया सुखदाता छोड़ ना जाई दूरे। मलार महला पंजवा राज ते कीट कीट ते सुरपत कर दोख जठर कौ भरते, कृपा निध छोड़ आन कौ पूजै आत्म काती हरते। हर बिसरत ते दुख दुख मरते, अनक बार प्रमै बो जोनी टेक न काहू धरते रहाओ। त्याग स्वामी आन कौ बिचर चितवत, मूड मुग्ध खल खरते, कागर नाव लंघै कत सागर बिरथा कथत हम तरते। शिव बिरंच असुर सुर जेते काल अग्न मैं जरते, नानक सरन चरण कमलन की तुमन डारो प्रभ करते। राग मलार महला पंजवा धुप दे कर पहला, एको अंकार सतगुर प्रसाद। प्रभ मेरे ओए बैरागी त्यागी, हाँ एक खिन तिस बिन रह ना सकाऊं, प्रीत हमारी लागी रहाओ। उनके संग मोहे प्रभ चित आवे, संत प्रसाद मोहे जागी, सुन उपदेश पय मन निर्मल गुण गाए रंग रंगी। एहो मन दे किए संत मीता कृपाल पय वडभागी, महा सुख पाया बरन ना साकौ रेन नानक जन पागी। मलार महला पंजवा माई मोहे प्रीतम देहो मिलाई, सगल सहेली सुख पर सूती जेह कर लाल बसाई रहाओ। मोहे अवगन प्रभ सदा दयाला, मोहे निर्गुण क्या चितराई, करो बराबर जो प्रे संग राती। ए हमें की टीठाई पई निमाणी सरन एकता की, गुर सतगुर पुरख सुखदाई, एक निमुख मैं मेरा शब्द काटिया, नानक सुख रहन बिहाई। मलार महला पंजवा बरस मेघ जी तिल बिल मना लाओ, बरस प्यारे मन सधारे, होए आनंद सदा मन चाओ रहाओ। हम तेरी धर स्वामिया मेरे, तू क्यों मनो बिसारे, स्त्री रूप चेरी की न्याई, सोभ नहीं बिन परतारे, बिनो सुनियो जब ठाकर मेरा, बेग आयो कृपा तारे, कहो नानक मेरो बनियो सुहागो,
पत सोभा पले आचारे मलार महला पंजवा। प्रीतम साचा नाम ते आए दुख दर्द बिनसै भव सागर गुर की मूर्त हृदय बसाए रहाओ। दुश्मन हते दोखी सब व्यापे हर शरण आई आया रख न हारे हाथ दे राखियो नाम पदार्थ पाया। कर कृपा किलविख सब काटे नाम निर्बल मन ली दिया। गुण निधान नानक मन वसिया बाहुड़ दुख न थिया मलार महला पंजवा। प्रभ मेरो प्रीतम प्राण प्यारे प्रेम भगत अपनो नाम दीजै दयाला नगरों तारे रहाओ। सिमरो चरण तुहारे प्रीतम हृदय तुहारी आसा संत जना पै करो बेनती मन दर्शन की प्यासा। बिशरत मरण जीवन हर मिलते जन को दर्शन दीजै नामाधार जीवन तन नानक प्रभ मेरे कृपा की जय मलार महला पंजवा। आबे अपने प्रीतम स्यो बने आई राजा राम रमत सुख पायो बरस मेघ सुखदाई रहाओ। एक पल बिसरत नहीं सुख सागर नाम नमै निद पाई अदोत भयो पूर्ण भावी को भेटे संत सहाई। सुख उपजे दुख सगल बिनासे पार ब्रह्म लिवलाई। तरयो संसार कठिन पै सागर हर नानक चरण ते आई मलार महला पंजवा। कान हर बरस सगल जग छाया भय कृपाल प्रीतम प्रभ मेरे आनंद मंगल सुख पाया रहाओ। मिटे कलेस तृष्ण सब बूझी पार ब्रह्मन त्याया साध संग जन्म मर निवारे बहुर न कथूं ताया। मन तन नाम निरंजन रातो चरण कमल लिवलाया। अंगीकार कियो प्रभ अपने नानक दास शरणाया मलार महला पंजवा। बिशरत क्यों जीवन ओए जीवन बिशरत क्यों जीवे ओए जीवन चितह उलास आस मिल बेकी चरण कमल रस पीवन रहाओ। जिन कौ प्यास तुम्हारी प्रीतम तिन कौ अंतर नाही जिन कौ बिसरै मेरो राम प्यारा से मुए मर जाही। मन तन रव रहया जगदीशर पेखत सदा हजूरे नानक रव रहे हो सब अंतर सर्ब रहया पर पूरे। मलार महला पंजवा। हर कै भजन कौन कौन ना तारे खग तन मीर तन मृग तन ब्राह तन साधु संग उधारे रहाओ। देव कुल दैत कुल जख किन्नर नर सागर उतरे पारे जो जो भजन करे साधु संग ताके दुख बिदारे। काम क्रोध महाबिख्या रस इनते पय निरारे दीन दयाल जपै करना मैं नानक सद बलिहारे। मलार महला पंजवा। आज मैं बैस्यो हर हाट नाम रास सांझी कर जन स्यो जाओ न जमकै घाट रहाओ। तार अनुग्रहो पार ब्रह्म राखे ब्रह्म के खुले कपाट बेसुमार साहो प्रभ पाया लाह चरण निदखाट। शरण गही अचत बनासी किल विख काढे है शांट कल कलेश मिटे दास नानक बहुर न जोनी माट। मलार महला पंजवा। बहुबिद माया मोहे हैरानो कोट मदे को बिरला सेवक पूर्ण भगत चिरानो रहाओ। इत उत डोल डोल श्रम पायो तन तन होत बिरानो लोग दुराए करत ठगियाई होतो संग न जानो। मृग पंखी मीन दीन नीच ए संकट फिर आनो कहो नानक पाहन प्रभ तारो साध संगत सुख मानो। मलार महला पंजवा। दुष्ट मोए बिख खाई री माई जिसके जी तिन ही रख लीने मेरे प्रभ को कृपा आई रहाओ। अंतर जामी सब मैं वरतै तापो कैसा पाई
संग सहाई छोट ना जाई, प्रभ दिसै सबनी ठाई। अनाथा नाथ दीन दुख पंजन आप लिए लड़ लाई, हर की ओट जी वह दास तेरे, नानक प्रभ सरनाई। मलार महला पंजवा, मन मेरे हर के चरण रवीजै, दर्श प्यास मेरो मन मोहयो, हर पंख लगाए मिली जय रहाओ। खोजत खोजत मार्ग पायो, साधु सेव करी जय, तार अनुग्रहो स्वामी मेरे, नाम महारस पीजै। त्राहे त्राहे कर सरनी आए, जल तो कृपा की जय, कर गए ले हो दास अपने को, नानक अपनों की जय। मलार महला पंजवा, प्रभ को भगत वछर बिरदायो, निंद कुमार चरण तल दीने, अपने जस वरतायो रहाओ। जय जयकार कीनो सब जग में, दया जियन में पायो, कंठ लाए अपने दास राखियो, ताती वाओ न लायो। अंगीकार कियो मेरे स्वामी, ब्रह्म पाओ मेट सुखायो, महा आनंद करो दास हर के, नानक विश्वास मन आयो। राग मलार महला पंजवा, चौपदे कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद गुरमुख दिसै ब्रह्म पसार, गुरमुख त्रै गुणिया विस्थार, गुरमुख नाद वेद विचार, बिन गुर पूरे कोर अंधार। मेरे मन गुर गुर करत सदा सुख पाई है, गुर उपदेश हर विसरे हर हृदय वस्यो, सास ग्रास अपना खसम त्याई है रहाओ। गुर के चरण मिटो बल जाओ, गुर के गुण अंदनित गाओ, गुर की धूड़ करो शनान, साची दरगह पाई है मान। गुर बोएथ पव जल तारन हार, गुर पेटिया ना होए जोन अवतार, गुर की सेवा सो जन पाए, जा कहो कर्म लिखिया तुर आए। गुर मेरी जीवन गुर आधार, गुर मेरी वर्तन गुर परवार, गुर मेरा खसम सतगुर सरनाई, नानक गुर पार ब्रह्म जाकी कीम ना पाई। मलार महला पंजवा, गुर के चरण हृदय वसाए, कर कृपा प्रभया मिलाए, अपने सेवको ले प्रभ लाए, ताकि कीमत कही ना जाए। कर कृपा पूर्ण सुविधा ते, तुमरी कृपा ते तू चित आवे, आठ पहरो तेरा रंग राते रहाओ। गावन सुन सब तेरा पहाना, हुक्म बुझै सो साज समाणा, जब जब जीवै तेरा नाओ, तुझ बिन दूजा नाही थाओ। दुख सो करते हुक्म रजाए, पाणे बख्स पाणे दे सजाए, दुहा सिरिया का करता आप, कुर्बान जाई तेरे प्रताप, तेरी कीमत तू है जाने, तू आपे बूझै सुने आप वखाने। सेई भगत जो तुद पाणे, नानक तिन कै सद कुर्बाने। मलार महला पंजवा, परमेसर होवा दयाल, मेघ वरसै अमृत तार, सगले जी जंत त्रिपतासे, कार्य आए पूरे रासे। सदा सदा मन नाम संभाल, गुरपुरे की सेवा पाया, ऐथे उथे निभै नाल रहाओ। दुख पन्ना पै पंजन हार, अपने जिया की कीती सार, रखण हार सदा मेहरबान, सदा सदा जाइए कुर्बान। काल गवाया करतै आप, सदा सदा मन तिसनो जाप, दृष्ट तार राखे सब जंत, गुण गावो नित नित भगवंत। एको करता आपे आप, हर के भक्त जाने प्रताप, नावे की पैज रखदा आया, नानक बोले तिसका बोलाया। मलार महला पंजवा, गुरसरनाई सगल निदान, साची दरगह पाई है मान। ब्रह्म पाओ दुख दर्द सब जाए, सा संग सद हर गुण गाए। मन मेरे गुरपूरा सा लाहे, नाम निदान जपो दिन राती, मन चंदे फल पाए रहाओ। सतगुर जेवड़िया वरना कोए, गुर पार ब्रह्म परमेसर सोए। जन्म मरण दुख ते राखे, माया बिख फिर बहुन ना चाखे।
गुर की महिमा कथन ना जाए, गुर परमेश्वर सच है नाए। सच संजम करनी सब साची, सो मन निर्मल जो गुर संग राची। गुर पूरा पाइए वडभाग, काम क्रोध लो मन ते त्याग। कर कृपा गुर चरण निवासे, कर कृपा गुर चरण निवास। नानक की प्रभ सच अरदास, राग मलार महला पंजवा। पड़ताल करती जाए को अंकार, सतगुर प्रसाद। गुर मनार प्रे दयार, स्यों रंकिया किनोरी सगल सिंगार। तजोरी सगल बेकार, ताप तो अस्थिर थिया रहाओ। ऐसे रे मन पाए कै, आप गवाए कै। कर साधन स्यों संग, बाजे बजाय मृदंग। अनाहद को कलरी, राम नाम बोले मधुर बैन अत सुहिया। ऐसी तेरे दर्शन की सोभ, आत्या पार प्रया मोग। तैसे ही संग संत बने, पाव उतार नाम पने। राम राम राम माल, मन फेरते हर संग संगिया। जन नानक प्रियो प्रीतम थिया। मलार महला पंजवा, मन कने प्रमे बने। उमकत रस चाले, प्रम मिलबे की चाह रहाओ। त्रै गुण माई मोह आई, कहो बेदन काहे। आने उपाव सगर किए, न दुख सा कैलाहे। पज सरन साधु नानका, मिल गुण गोबिंद गाहे। मलार महला पंजवा, प्रे की सोभ सुहावनी निकी। हा हा हू हू गंधर्व अपसरा, आनंद मंगल रस गावनी निकी रहाओ। तुनत ललत गुनग अनक पांत, बहुबिध रूप दिखावनी निकी। गिर तर थल जल पवन भरपुर, कट कट लालन छावनी निकी। साध संग रामैया रस पायो, नानक जाके पावनी निकी। मलार महला पंजवा, गुरप्रीत प्यारे। चरण कमल हृदय अंतर तारे। रहाओ दर्श सफल्यो, दर्श पेख्यो। गए किल बिख गए, मन निर्मल उजियारे। बिसम बिसमै बिसम पही, अड़ग कोट हरते नाम लई। गुर चरण मस्तक डार पही, प्रभ एक तू ही एक तू ही। भगत टेक तुहारे, जन नानक शरण द्वारे। मलार महला पंजवा, बरस सरस आग्या। होहे आनंद सगल भाग रहाओ। संत संगे मन पर फड़ै, मिल मेघ तर सुहाग। कन कोर प्रीत मोर, चित चातरक बूंद ओर। ऐसो हर संगे मन मोह, त्याग माया तोह। मिल संत नानक जागया। मलार महला पंजवा, गुण गोपाल गाओ नीत। राम नाम तार चीत रहाओ। छोड़ मान तज गुमान, मिल साधुआ कै संग। हर सिमर एक रंग, मिट जाहे दोख मीत। पार ब्रह्म पहे दयाल, बिनस गए बिखै जंजाल। साध जना कै चरण लाग, नानक गावै गोविंद नीत। मलार महला पंजवा, कन गरजत गोविंद रूप। गुण गावत सुख चैन रहाओ। हर चरण सरन तरन सागर, तुन अनहता रस बैन। पथक प्यास चित सरोवर, आत्म जल लैन। हर दर्स प्रेम जन नानक, कर कृपा प्रभ दैन। मलार महला पंजवा, हे गोविंद हे गोपाल, हे दयाल लाल रहाओ। प्राण नाथा नाथ सखे, दीन दर्द निवार। हे समर्थ गम पूर्ण, मोहे मया तार। अंधकूप महापयान, नानक पार उतार। मलार महला पहला, अष्टपदियां कर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। चकवी नैन नींद न चाहे, बिन

प्रेम सिखाई तिस बिन कड़ी नहीं जग जीवा ऐसी प्यास तसाई रहाओ। सरवर कमल किरण आकाशी बिकसै सह सुभाई प्रीतम प्रीत बनी अब ऐसी ज्योति ज्योत मिलाई। चात्रक जल बिन प्रयो प्रयो टेर बिलप करे बिल लाई कन हर कोर दसो दिस बरसै बिन जल प्यास न जाई। मीन निवास उपजै जल ही ते सुख दुख पुरब कमाई खेन तिल रह न सकै पल जन बिन मरण जीवन तिस ताई। तन वांडी पिर देश निवासी सचे गुरपै शब्द पठाई गुण संग्रह प्रभृदय निवासी भगत रति हर खाई। प्रयो प्रयो करै सब ही जेती गुर पावै प्रयो पाई प्रयो नाले सद ही सच संगे नदरी मेर मिलाई। समय जियो जियो है सोई घट घट रहा समाई गुर प्रसाद कर ही प्रगासिया सहजे सह समाई। अपना काज सवारो आपे सुखदाते गोसाई गुर प्रसाद कर ही पिर पाया तौ नानक तप्त बुझाई। मलार महला पहला जागत जाग रह गुर सेवा बिन हर मैं को नाही अनक जतन कर रहन ना पावे आच काच ढर पाही। इस तन तन का कहो गर्भ कैसा बिनस्त बार न लागे बवरे हम मैं गर्भ खपे जग ऐसा रहाओ। जय जगदीश प्रभु रखवारे राखे परखे सोई जेती है तेती तुझ ही ते तुम सरेवर ना कोई। जियो पाए जुगत हथ कीनी आपे गुरमुख अंजन अमर अनाथ सर्व सिर मोरा काल बेकाल परम पै खंजन। कागद कोट एहो जग है बपरो रंगन चिहन चतराई नानी सी बूंद पवन पत खोवै जन्म मरै खिनताई। नदी उपकंठ जैसे कर तरवर सरपन कर कर माही उल्टी नदी कहां कर तरवर सरपन डसै दूजा मन माही। गारड गुर ज्ञान ध्यान गुर बचनी बिखिया गुरमत जारी मन तन हेम पए सच पाया हर की भगत निरारी। जेती है तेती तुद जाचै तू सर्व जिया दयाला तुमरी शरण परे पत रखो साच मिलै गोपाला। बांदी तंद अंध नहीं सूजै बदक कर्म कमावै सतगुर मिलै ता सूजस बूजस सच मन ज्ञान समावै। निर्गुण देह साच बिन साची निर्गुण देह साच बिन काची मैं पूछो गुरे अपना नानक सो प्रभु प्रभु दिखावै बिन साचे जग सुपना। मलार महला पहला चात्रक मीन जल ही ते सुख पावै सारंग शब्द सुहाई। रैन बबीहा बोल्यो मेरी माई रहाओ प्रेस्यो प्रीत ना उल्टै कबहू जोतै पावै साई। नींद गई हम मैं तन थाकी सच मत हृदय समाई। रूखी बिरखी उडो भूखा पीवा नाम सुभाई लोचन तार ललता बिललाती दर्शन प्यास रिजाई। प्रे बिन सिंगार करी तेता तन तापै कापरे अंग ना सुहाई। अपने प्यारे बिन एक खिन रह ना सका बिन मिले नींद ना पाई। पिर नजीक ना बूझै बपड़ी सतगुर दिया देखाई। सहज मिलिया तब ही सुख पाया तृष्णा शब्द बुझाई। कहो नानक तुझ ते मन मानिया कीमत कहन ना जाई। मलार महला पहला अष्टपदियां कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अखली ऊंडी जल पर नाल डूंगरू चौगड़ पाताल सागर शीतल गुर शब्द विचार मार्ग मुक्ता हो मैं मार।
ਮੈਂ ਅੰਧਲੇ ਨਾਵੈ ਕੀ ਜੋਤ, ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਚੱਲਾ ਗੁਰ ਕੈ ਪਹਿ ਭੇਤ। ਰਹਾਓ ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਦੀ ਪਾਦਰ ਜਾਣ, ਗੁਰ ਕੈ ਤਕੀਐ ਸਚੈ ਤਾਣ, ਨਾਮ ਸਮਾਲ ਸਰੂੜੀ ਬਾਣ, ਥੈ ਭਾਵੈ ਦਰਲੈ ਸਪਿਰਾਣ। ਉਂਡਾ ਬੈਸਾ ਇਕ ਲਿਵਤਾਰ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਨਾ ਜਲ ਡੂੰਗਰ ਨਾ ਉੱਚੀ ਧਾਰ, ਨਿਜ ਕਰ ਵਸਾ ਤਹਿ ਮਗਨਾ ਚਲਨਹਾਰ। ਜਿਤ ਘਰ ਵਸੈ ਤੂੰ ਹੈ ਬਿਦ ਜਾਣੈ, ਬੀਜੋ ਮਹਿਲ ਨਾ ਜਾਪੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਜੋ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੀ, ਸਭ ਜਗ ਦਗ ਬਿਆਸ਼ਾ ਪੈ, ਕਰਨ ਪਲਾਵ ਕਰੈ ਬਿਲ ਲਾਤੋ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਪੈ, ਪਲ ਪੰਕਜ ਮੈਂ ਨਾਮ ਛਡਾਏ, ਜੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੰਜਾਪੈ। ਇਕ ਮੂਰਖ ਅੰਧੇ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ, ਇਕ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਪੈ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ, ਜਿਨ ਪੀਤੀ ਤਿਸ ਮੁਖ ਦੁਆਰ। ਨਾਮ ਪੈ ਪਾਇ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਹੀ, ਗੁਰ ਕਰਨੀ ਸਚ ਬਾਣੀ, ਇੰਦ ਵਰਸੈ ਤਰਤ ਸੁਹਾਵੀ, ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ। ਕਾਲਰ ਬੀਜਸ ਦੁਰਮਤ ਐਸੀ, ਨਿਗੁਰੇ ਕੀ ਨੀਸਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਜੋ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰਾ, ਡੂਬ ਮੋਏ ਬਿਨ ਪਾਣੀ। ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਨੋ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਰਜਾਏ, ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਮੇਟਣਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੁਕਮੇ ਬਾਂਧਾ ਕਾਰ ਕਮਾਏ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਰਾਚੈ ਸਚ ਸਮਾਏ, ਚਾਹੋ ਦਿਸ ਹੁਕਮ ਵਰਤੈ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ, ਚਾਹੋ ਦਿਸ ਨਾਮ ਪਤਾਲੰ, ਸਭ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੈ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਬੈਆਲੰ। ਜਾਮਣ ਮਰਨਾ ਦੀਸੈ ਸਿਰ ਉਬਉ, ਖੁਦਿਆ ਨਿੰਦਰਾ ਕਾਲੰ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਮਨ ਭਾਵੈ, ਸਾਚੀ ਨਦਰ ਰਸਾਲੰ। ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਰਨ ਮੁਕਤ ਗਤ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਕੰਠੇ ਬੈਠੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਨੈ। ਤੂੰ ਕੈਸੇ ਆੜ ਫਾਥੀ ਜਾਲ, ਅਲਖ ਨਾ ਜਾ ਚਿਹਰਦੈ ਸਮਾਲ। ਰਹਾਉ ਏਕ ਜੀ ਕੈ ਜੀਆਂ ਖਾਹੀ, ਜਲ ਤਰਤੀ ਬੂਡੀ ਜਲ ਮਾਹੀ, ਸਰਬ ਜੀ ਕੀ ਏ ਪ੍ਰਤਪਾਨੀ, ਜਬ ਪਕੜੀ ਤਬ ਹੀ ਪਛਤਾਨੀ। ਜਬ ਗਲ ਫਾਸ ਪੜੀ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਊਂਡ ਨਾ ਸਾਂਕੈ ਪੰਖ ਪਸਾਰੀ। ਰਸ ਚੂਗੈ ਮਨ ਮੁਖ ਗਾਵਾਰ, ਫਾਤੀ ਛੂਟੈ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਤੂਟੈ ਜਮਕਾਲ, ਹਿਰਦੈ ਸਾਚਾ ਸਬਦ ਸੰਭਾਲ। ਗੁਰਮਤ ਸਾਚੀ

सच करे सो होई। श्लोक महला तीजा। बाबिहा गुणवंती महल पाया, अवगुणवंती दूर, अंतर तेरा हर वसै गुरमुख सदा हजूर। कूक पुकार ना हो वई, नदरी नदर निहाल, नानक नाम रते सहजे मिले, शब्द गुरु कै काल महला तीजा। बाबिहा बेनती करे, कर कृपा देहो जी दान, जल बिन प्यास ना उतरै, छुटक जाहे मेरे प्राण। तू सुखदाता बेअंत है, गुणदाता निधान, नानक गुरमुख बख्श लय, अंत बेली होए भगवान। पौड़ी। आपे जगतो पाए कै, गुण अवगुण करे विचार, त्रै गुण सर्ब जंजाल है, नाम ना तरे प्यार। गुण छोड़ अवगुण कमाव दे, दरगै होहे खुआर, जुवै जन्म तिन्नी हारिया, कित आए संसार। सच्चा शब्द मन मारिया, अहनस नाम प्यार, जिन्नी पुरखी उरतारिया, सच्चा लाख्या पार। तू गुणदाता निदान है, असी अवगण यार, जिस बख्शे सो पाए सी, गुर शब्दी विचार। सलोक महला पंजवा। रात ना विहावी सागता, जिन्ना विसरै नाओ, राती दिन सुहेलिया, नानक हर गुण गाओ। महला पंजवा। रतन जिवे हरमान का, हब्बे मणि मथन, नानक जो प्रभाणिया, सच्चा दर सोहन। पौड़ी। सच्चा सतगुर सेव सच संभालिया, अंत खलवाया आए, जे सतगुर अगै कहलिया, पोहे ना सकै जमकाल, सच्चा रखवालिया, गुरसाखी जोत जगाए, दीवा बालिया। मन मुख विण नामे कूड़ियार, फिरै बेतालिया, पशु मानस जम पलेटे, अंदरों कालिया, सबो वरतै सच, सच्चा शब्द निहालिया। नानक नाम निधान है, पूरे गुर देखा लिया। श्लोक महला तीजा। बाबी है हुक्म पछाणिया, गुर कैसै सुभाए, मेघ वरसै दया कर, गूढ़ी शै बरलाए। बाबी हे कूक पुकार रह गई, सुख वसिया मन आए, नानक सोसा लाही है, जे देंदा सबना जिया रिजक समाए। महला तीजा। चात्रक तू ना जानही, क्या तुद विच तिखा है, कित पीतै तिख जाए, दूजे पाए भ्रमिया, अमृत जल पलै ना पाए। नदर करे जे अपनी, ता सतगुर मिलै सुभाए, नानक सतगुर ते अमृत जल पाया, सहजे रिया समाए। पौड़ी। एक वनखंड बैसै जाए, साधना दे वही, एक पाला कक्कर पहन, शीतल जल हे वही। एक पसम चढ़ावै अंग, मैल ना तो वही, एक जटा बिकट बिकराल, कुल कर खो वही। एक नगन फिरै दिन रात, नींद ना सो वही, एक अगन जलावै अंग, आवे गो वही। विण नावै तन शार, क्या कह रो वही, सोहन खसम द्वार, जे सतगुर से वही। सलोक महला तीजा। बाबीहा अमृत वेले बोलिया, तां दर सुनी पुकार, मेघनो फरमान होवा, वरसों कृपा तार। हाँ तिनकै बलिहारण है, जिन्नी सच रखिया उर तार। नानक नामे सब हरियावली, गुर कै शब्द विचार महला तीजा। बाबीहा इव तेरी तिखा ना उतरै, जे सो करै पुकार, नदरी सतगुर पाईऐ, नदरी उपजै प्यार। नानक साहिब मन वसै, विचों जाए विकार। पौड़ी। एक जैनी उजड़ पाए, तुरो खुआया, तिन मुख नाही नाम, ना तीर्थ नाया। हथी सिर खो हाय, न पद कराया, कुचल रह दिन रात, शब्द ना पाया, तिन जात ना पत ना कर्म, जन्म गवाया। मन जूठै वे जात, जूठा खाया, बिन शब्द आचार, ना किन्ही पाया, गुरमुख ओंकार सच समाया। सलोक महला तीजा। सावन सरसी कामणी, गुर शब्दी विचार, नानक सदा सुहागणी, गुर कहत अपार। महला तीजा। सावन दजै गुण बाहरी, जिस दूजे पाए प्यार, नानक फिर की सार ना जानी, सब सिंगार खुआर। पौड़ी। सच्चा अलाख्या पे ओ।

हमरे हर प्राण सखा स्वामी हर मीता, मेरे मन तन जी हर हरे, हरे राम नाम तन माल, जा को भाग तिन लियो री सुहाग, हर हर हरे हरे गुण गावे गुरमत, हौ बलबले हौ बलबले, जन नानक हर जप पही, निहाल निहाल निहाल। कानड़ा महला चौथा, हर गुण गावो जगदीश, एका जी कीचे लख बीस, जप हर हर शब्द जपीस, हर हो कृपीस रहाओ। हर कृपा कर स्वामी हम लाए हर सेवा, हर जप जपे जप जपो जगदीश, तुमरे जन राम जपे ते उत्तम, तिन कहो हाँ कुम कुमे कुम कुम जीस। हर तुम वड वडे वडे वड उचे, सो करे जे तुद पावीस, जन नानक अमृत पिया गुरमती, तन तन तन तन तन गुरु साबीस। कानड़ा महला चौथा, पज राम मन राम, जिस रूप ना रेख वडाम, सतसंगत मेल पज राम, बड हो पाग मथाम रहाओ, जित ग्रह मंदिर हर होत जास, तित कर आनंदो आनंद, पज राम राम राम, राम नाम गुण गावो हर प्रीतम, उपदेश गुरु गुर सतगुरा, सुख होत हर हरे हर हरे, हरे पज राम राम राम। सब सिष्ट तार हर तुम कृपाल करता, सब तू तू तू राम राम राम, जन नानको शरणागति देहो गुरमति, पज राम राम राम। कानड़ा महला चौथा, सतगुर चट पग चाट, जित मिल हर पादर बाट, पज हर रस रस हर गाट, हर हो लिखे लिलाट रहाओ। खट कर्म क्रिया कर बहु बहु विस्थार, सिद्ध साधक जोगिया कर जट जटा जट जाट, कर पेख ना पाईए हर ब्रह्म जोग हर पाईए, सतसंगति उपदेश गुरु गुर संत जना, गुर खोल खोल कपाट, तू अपरंपर स्वामी आता गाहा, तू भरपुर रया जल थले, हर एक एको एक एक है हर थाट, तू जाने सब विद बूझे आपे, जन नानक के प्रभ कट कटे कट कटे कट हर काट। कानड़ा महला चौथा, जप मन गोविंद माधो, हर हर आगा दो, मत गुरमत हर प्रवला दो, तुर हो लिखे लिला दो रहाओ, बिख माया संच बहु चित बिकार, सुख पाइये हर पज संत संत संग दी, मिल सत गुरु गुर साधो, ज्यो शोहे पारस मनूर पए कंचन, त्यो पतत जन मिल संगति, सुध होवत गुरमती सुधादो, ज्यो काष्ट संग लोहा बहुतरता, त्यो पापी संग तरे, साध साध संगति, गुर सतगुरु गुर साधो, चार वर्ण चार आश्रम है, कोई मिले गुरु गुर नानक, सो आप तरे कुर सगल तरा दो। कानड़ा महला चौथा, हर जस गावो भगवान, जस गावत पाप लहान, मत गुरमत सुन जस कान, हर हो कृपान रहाओ। तेरे जन त्यावै एक मन एक चित, ते साधु सुख पावै, पज हर हर नाम निधान, उस्तत करह प्रभ तेरिया, मिल साधु साजना गुर सतगुरु भगवान, जिनके हृदय तू स्वामी, ते सुख फल पावै, ते तरे पव सिंध, ते भगत हर जान, तिन सेवा हम लाए हरे, हम लाए हरे, जन नानक के हर तू।

दर्शन प्यास बहुत मन मेरा, मिल नानक देव जगत गुर के रै। कानड़ा महला पंजवां, ऐसी कौन विदे दर्शन परसना रहाओ, आस प्यास सफल मूर्त उमग ही ओ तरसना, दीन लीन प्यास मीन संतना हर संतना, हर संतना की रेन ही ओ अर्प देन, प्रभ पय है कृपेन, मान मोह त्याग छोड़ो तो नानक हर जियो भेटना। कानड़ा महला पंजवा, रंगा रंग रंगन के रंगा, कीट हस्त पूर्ण सब संगा रहाओ, बर्त नेम तीर्थ सहत गंगा, जल हेवत भूख हर नंगा, पूजा चार करत में लंगा, चक्कर कर्म तिलक खाटंगा, दर्शन भेटे बिन सतसंगा, हठ निगरह अत रहत बिटंगा, हाँ रोग ब्यापै चुकै न पंगा, काम क्रोध अत तृष्ण जरंगा, सो मुक्त नानक जे सतगुर चंगा। कानड़ा महला पंजवां, कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तिख बूझ गई गई मिल साध जना, पंच भागे चोर सहजे सुखैनो, हरे गुण गावती गावती गावती दर्स प्यार रहाओ, जैसी करी प्रभ मोसियो मोसियो, ऐसी हो कैसे कराओ, हियो तुम्हारे बलबले बलबले बल गई, पहले पै संत पाए, त्याए त्याए प्रीत लाए, प्रभ थान थे रोके हरो, जित जंतन कर विचार, अनक दास कीर्त करे तुहारी, सोई मिलियो जो भाव तो, जन नानक ठाकर रहो समाए, एक

जानो हम बिरथे कोई मार्ग पंथ बतावे प्रभ का, कहो तिन कहो क्या दिन थे, सब तन मन अर्पो अर्पया रापो कोई मिले प्रभ मिल थे। हर के गुण बहुत बहुत बहुत शोभा, हम तुच्छ कर कर वर्ण थे, हमरी मत वसगत प्रभ तुमरै, जन नानक के प्रभ समर्थ थे, कल्याण महला चौथा। मेरे मन जप हर गुना कथ सुन थई, धर्म अर्थ सब काम मोख है, जन पीछे लग फिर थई रहाओ। सो हर हर नाम ते आवे हर जन, जिस वट भाग मथई, जै दरगह प्रभ लेखा मांगे, तै छूटे नाम ते आए थई। हमरे दुख बहु जन्म जन्म के, दुख हमें मैल लग थई, गुरतार कृपा हर जल ना वाए, सब के लिख पाप कथई। जन कह हृदय अंतर प्रभ स्वामी।

रसक गटक नित पीजै, बसदा सबत दीप है सागर, कड कंचन कर तरीजै। मेरे ठाकर के जन इनो ना बांचै, हर मांगै हर रस दीजै। साकत नर प्राणी सत भूखे, नित भूखन भूख करीजै। तावत ताए ताव है प्रीत माया, लख कोसन कौ बिथ दीजै। हर हर हर हर हर जन उत्तम, क्या उपमा तिन दीजै। राम नाम तुल और ना उपमा, जन नानक कृपा करीजै। कल्याण महला चौथा। राम गुरपारस परस करीजै, हम निर्गुणी मनूर या तफीके, मिल सतगुर पारस की जय रहाओ। सुरग मुक्त बैकुंठ सब बांछै, नित आसा आस करी जय। हर दर्शन के जन मुक्त ना मांगै, मिल दर्शन तृप्त मन धीजै। माया मोह सबल है भारी, मोह कालख दाग लगी जय। मेरे ठाकर के जन अलिप्त है मुक्ते, ज्यो मुर्गाई पंख ना पीजै। चंदन वास भुयंगम वेड़ी, के मिलिए चंदन लीजै। काढ़ खड़ग गुर ज्ञान करारा, बिक्षेद छेद रस पीजै। आन आन समदा बहुकीनी, पल बैसंतर पस्म करी जय। महायुगर पाप साक्त नरकी ने, मेरे साधु लुकी दी जय। साधु साधु साध जनी के, जिनंतर नाम तरी जय। परस निपरस पय साधु जन, जन हर भगवान दखी जय। साक्त सूत बहु गुरुजी भरिया, क्यों कर तंत नी जय। तंत सूत किशनिक सह नाही, साकत संग ना कीजै। सतगुर साध संगत है नीकी, मिल संगत राम रवीजै। अंतर रतन जिवे हर माणक, गुर कृपा ते लीजै। मेरा ठाकर वड्डा वड्डा है स्वामी, हम क्यों कर मिले मिलीजै। नानक मेल मिलाए गुरपूरा, जन को पूर्ण दीजै। कल्याण महला चौथा। रामा राम रामो राम रवीजै, साधु साधु साध जनी के, मिल साधु हर रंग की जय रहाओ। जी जंत सब जग है जेता, मन डोलत डोल करी जय। कृपा कृपा कर साध मिलावो, जग थमन कौ थम दी जय। बसदा तला तला सब ऊपर, मिल साधु चरण रुली जय। अति उत्तम अति उत्तम होवो, सब श्रेष्ठ चरण तल दी जय। गुरमुख जोत भली सिवनी की, आन पानी सख्त भरी जय। मैन दंत निकसै गुरबचनी, सार चब चब हर रस पी जय। राम नाम अन गुरो बहु किया, गुर साधु पुरख मिली जय। गुण राम नाम बिसीरन की है, हर सगल भवन जस दी जय। साधु साधु साध मन प्रीतम, बिन देखे रह ना सकी जय। ज्यों जल मीन जलंग जल प्रीत है, खिन जल बिन फूट मरी जय।

ऐसा ब्रह्म विचार घट घट एक वखाणी है कहो ना देखा जाए। खोटो पुठो राली है बिना मैं पत जाए। जा तू मिले ता मिल रहा जा तेरी होए रजाए। जात जन्म ने पूछी है सच कर लिहो बताए।

जागत बिकसै मूठो अंधा गल फाही सिर मारे तंदा आसा आवै मन सा जाए उर्जी ताणी किशना बसाए। जागस जीवन जगनहारा सुख सागर अमृत भंडारा रहाओ कहो ना बूझै अंध ना सूझै पूंडी कार कमाई आपे प्रीत प्रेम परमेसर करमी मिले वडाई। दिन दिन आवै तिल तिल शीजै माया मोह कटाई बिन गुर बूडो ठौर ना पावै जब लग दूजी राई। अहनस जिया देख संभाले सुख दुख प्रभ कमाई कर्महीन सच भीखिया मांगै नानक मिलै वडाई। प्रभाती महला पहला मस्त करो मूर्ख जग कहिया।

ज्यो भावै त्यो राखो मेरे स्वामी, एह तेरी वड्याई रहाओ। जो तेरी सरनाई हर जियो, तिन की करें प्रतपाल। आप कृपा कर रखो हर जियो, पोहे ना सके जमकाल। तेरी सरनाई सच्ची हर जियो, ना यो कटे ना जाए। जो हर छोड़ दूजे पाए लागे, ओ जमे तै मर जाए। जो तेरी सरनाई हर जियो, तिन्ना दुख पू किश नाहे। नानक नाम सलाहे सदा तू, सच्चे शब्द समाहे। प्रभाती महला तीजा, गुरमुख हर जियो सदा ते आवो। जब लग जी प्राण, गुर शब्दी मन निर्मल होवा। चूका मन अवमान, सफल जन्म तिस प्राणी केरा। हर कै नाम समान, मेरे मन गुर की सिख सुनी जय। हर का नाम सदा सुखदाता, सहजे हरस की जय। रहाओ मूल पछाण, तिन निज कर वासा। सहजे ही सुख होई, गुर कै शब्द कमल पर गासिया। हो मैं दुर्मत खोई, सब ना मैं एको सच वरतै। विरला बुझै कोई, गुरमति मन निर्मल होवा। अमृत तत्व खानै, हर का नाम सदा मन वसिया। विच मन ही मन मानै, सद बलिहारी गुर अपने। विटों जित आत्म राम पछानै। मानस जन्म सतगुरु ना सेविया, बिरथा जन्म गवाया। नजर करे ता सतगुर मेले, सहजे सही समाया। नानक नाम मिलै वड्याई, पूरे भगत आया। प्रभाती महला तीजा, आपे पांत बनाए बहुरंगी। सिष्टियो पाए प्रभ खेल किया। कर कर वेखै करे कराए, सर्ब जियां नो रिजक दिया। कली काल में रवे आराम, कड़कड़ पूर रहा प्रभे को। गुरमुख प्रगट हर हर नाम, रहाओ। गुप्ता नाम वरतै विच कल युग, कटकट हर भरपूर रहया। नाम रतन तिन्हा हिरदै प्रगटिया, जो गुर सरनाई पज पया। इंद्री पंच पंचे वसे आणै, खिमा संतोख गुरमत पावै। सो तन तन हर जन वड पूरा, जो पै बै राग हर गुण गावै। गुर ते मोह फेरे जे कोई, गुर का कहया ना चित तरै। कार्य आचार बहु संपो संचय, जो किश करै सो नरक परै। एको शब्द एको प्रभ वरतै, सब एक स्ते उत्पत चलै। नानक गुरमुख मेल मिलाए, गुरमुख हर हर जाय रलै। प्रभाती महला तीजा, मेरे मन गुर अपना सा लाहे। पूरा भाग हुआ मुख मस्तक, सदा हर के गुण गाहे। रहाओ अमृत नाम भोजन हर दे, कोट मदे कोई विर ला ले। जिसनो अपनी नजर करे, गुर के चरण मन माहे वसाए। दुख अनेरा अंदरों जाए, आपे साचा ले मिलाए। गुर की बाणी सो लाए प्यार, व्यथ उथे हो आधार। आपे देवे सृजनहार, सच्चा मनाए अपना पाणा। सोई भगत सुगड़ सुजाणा, नानक तिसकै सतगुरबाणा। प्रभाती महला चौथा, विभास एक ओंकार। सतगुर प्रसाद रसक रसक गुण गावै, गुरमत लिव उन्मन नाम लगान। अमृत रस पिया गुर शब्दी, हम नाम विटो कुरबान। हमरे जग जीवन हर प्राण, हरी उतमरे दे अंतर पायो। गुरमंत दियो हर कान, रहाओ। आवो संत मिलो मेरे भाई, मिल हर हर नाम वखान। कित बिद क्यों पाई है प्रभ अपना, मोको करो उपदेश हर दान। सत संगत में हर हर वसिया, मिल संगत हर गुण जान। वड्डे भाग सत संगत पाई, गुर सतगुर परस भगवान। गुण गावै प्रभ अगम ठाकुर के, गुण गाए रहे हैरान। जन नानक कहो गुर कृपा तारी, हर नाम दियो खिन दान। प्रभाती महला चौथा, उगवै सूर गुरमुख हर बोलै।
सब रहन संभालै हर गाल, हमरै प्रभ हम लोच लगाई, हम करै प्रभु हर पाल, मेरा मन साधु तूर रवाल, हर हर नाम दृढ़ायो गुर मीठा, गुर पग चारो हम बाल रहाओ, साकत कहो दिन रहन अंधारी, मोहे फाथे माया जाल, खिन पल हर प्रभ हृदय न वस्यो, रिन बांधे बहु बिदबाल, सत संगत मिल मत बुद्ध पाई, हो छूटे ममता जाल, हर नामा हर मीठ लगाना, गुर किए शब्द निहाल, हम बारक गुर अगम गोसाई, गुर कर कृपा प्रतपाल, बिख पौ जल डुबदे काढ लिहो प्रभ, गुर नानक बाल गोपाल, प्रभाती महला चौथा। एक खिन हर प्रभ कृपा तारी, गुण गाए रसक रसीक, गावत सुनत दो पहे मुक्ते, जिन्ना गुरमुख खिन हर पीक, मेरा मन हर हर नाम, मेरा मन हर हर राम नाम रस टीक, गुरमत नाम शीतल जल पाया, गुरमुख नाम शीतल जल पाया, हर हर नाम पिया रस चीक रहाओ, जिन हर हृदय प्रीत लगानी, तिन्ना मस्तक उजल टीक, हर जन सोभा सब जग उपर, ज्यो विच उड़वा ससकीक, जिन हर हृदय नाम न वस्यो, तिन सब कारज फीक, जैसे सिंगार करै देह मानुख, नाम बिना नगटे नक कीक, कट कट रमैया रमत राम राय, सब वरतै समयीक, जन नानक कव हर कृपा तारी, गुर बचन ते आयो करी मीक, प्रभाती महला चौथा। अगम दयाल कृपा प्रभ तारी, मुख हर हर नाम कहे, पतत पावन हर नाम ते आयो, सब किल विख पाप लहे, जप मन राम नाम रव रहे, दीन दयाल दुख पंजन गायो, गुरमत नाम पदार्थ लहे रहाओ, काया नगर नगर हर बसयो, मत गुरमत हर हर सहे, शरीर सरोवर नाम हर प्रगटयो, कर मंदिर हर प्रभ लहे, जो नर परम परम उदयाने, ते सागत मूड मोहे, ज्यो मृग नाव बसै बास बसना, प्रम प्रमयो चार गहे, तो वड़े अगम अगाध बोध प्रभ, मत देवो हर प्रभ लहे, जन नानक कहो गुर हाथ सिर तरयो, हर राम नाम रव रहे, प्रभाती महला चौथा। मन लागी प्रीत राम नाम, हर हर जप्यो हर प्रभ वडफा, सतगुर बचन सुखाने ही अरै, हर तारी हर प्रभ कृपफा, मेरे मन पज राम नाम हर निमखफा, हर हर दान दियो गुरपूरै, हर नामा मन तन बसफा रहाओ, काया नगर वस्यो कर मंदर, जप सोभा गुरमुख करपफा, हलत पलत जन पहे सुहेले, मुख उज्जल गुरमुख तरफा, अनपव हर हर हर लिव लागी, हर उर तारयो गुर निमुखफा, कोट कोट के

हर हर आप धरियो हर जन मैं जन नानक हर प्रभ एक फा। प्रभाती महला चौथा। गुर सतगुर नाम दृढ़ायो हर हर हम मोए जीवे हर जप बा। तन तन गुरु गुर सतगुर पूरा बिख डुबदे बहदे कडबा। जप मनो राम नाम अर्धम्बा उपजंपो पाए न पाइए कतहूं। गुरपूरे हर प्रभ लब्बा रहाओ। राम नाम रस राम रसायण रस पिया गुरमत रसबा। लोह मनूर कंचन मेर संगत हर उर तारियो गुर हरबा। हाँ मैं बिखिया नित लोभ लुभाने पुत कलत मोहे लुभबा। तिन पग संतन सेवे कभू ते मनमुख पूंबर परबा। तुमरे गुण तुम ही प्रभ जानो हम परे हार तुम सरन बा। ज्यो जानो त्यों राखो स्वामी जन नानक दास तुम नवा। शका एक। प्रभाती विभास पड़ताल महला चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जप मानो हर हर नाम निधान हर दरगह पावे मान। जिन जपया ते पार प्राण रहाओ। सुन मानो हर हर नाम कर ध्यान। सुन मानो हर कीर्त अठसठ मजान। सुन मन गुरमुख पावे मान। जप मन परमेश्वर प्रदान खिन खोवे पाप कोटान। मिल नानक हर भगवान प्रभाती महला पंजवा। विभास एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन हर किया तन सब साजिया पंच तत् रजोत निवाजिया। सहजा तरत बर्तन कौ पानी निमख ना विसारो सेवो सारंग पानी। मन सतगुर सेव होए परम गते हर सोग ते रह निरारा। ता तू पावे प्राण पते रहाओ। कापड़ भोग रस अनक पुंचाए मात पिता कुटुंब सगल बनाए। रिजक समाहे जल थन मीत सो हर सेवो नीता नीत। तहां सिखाई जै कोई ना होवै कोट अपराध एक खिन में तो होवै। दात करे नहीं पछोतावै एका बख्स फिर बहुर ना बुलावै। किरत संजोगी पाया पाल साध संगत में बसे गोपाल। गुर मिले आए तुमरे द्वार जन नानक दर्शन देहो मरार। प्रभाती महला पंजवा। प्रभ की सेवा जन की शोभा काम क्रोध मिटे तसलोभा। नाम तेरा जन कै पंडार गुण गावे प्रभ दर्श प्यार। तुमरी भगत प्रभ तुम्हें जनाई काढ़ जेवरी जन लिए छडाई रहाओ। जो जन दाता प्रभ कै रंग तिन सुख पाया प्रभ कै संग। जिस रस आया सोई जन पेख पेख मन में हैरान। सो सुखिया सब ते उत्तम सोए जा कै हृदय वस्या प्रभ सोए। सोई निश्चलिया वै न जाए अंदर प्रभ के हर गुण गाए। ता को करो सगल नमस्कार जा कै मन पूर्ण निरंकार। कर कृपा मोहे ठाकुर देवा नानक उदरै जन की सेवा। प्रभाती महला पंजवा। गुण गावत मन होए आनंद आठ पैर सिमरो भगवंत। जा कै सिमरन कलमल जाहे तिस गुर की हम चरनी पाहे। सुमत देवो संत प्यारे सिमरो नाम मोहे निस्तारे रहाओ। जिन गुर कहया मार्ग सीधा सगल त्याग नाम हर गीदा। तिस गुर कै सदा बल जाइय हर सिमरन जिस गुर ते पाइय। बूढ़त प्राणी जिन गुरै तराया जिस प्रसाद मोह नहीं माया। हलत पलत जिन गुरै सवारिया तिस गुर ऊपर सदा हम वारिया। महामुगते किया ज्ञानी गुर पूरे की कथ कहानी। पार ब्रह्म नानक गुरदेव वड्डे पाग पाइए हर सेव। प्रभाती महला पंजवा। सगले दुख मिटे सुख दिए अपना नाम जपाया। कर कृपा अपनी सेवा लाए सगला दुर्त मिटाया। हम बारक शरण प्रभ दयाल
अवगण काट किए प्रभ अपने राख लिए मेरे गुरु गोपाल रहाओ। ताप पाप बिनसे खिन पीतर पय कृपाल गुसाई सास सास पार ब्रह्म आराधी अपने सदगुर कै बल जाई। अगमै गोचर बेअंत स्वामी ता का अंत ना पाईए लाहा खाट हुई है तनवंता अपना प्रभु त्याई है। आठ पहर पार ब्रह्म त्याई सदा सदा गुण गाया कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ पार ब्रह्म गुर पाया। प्रभाती महला पंजवां सिमरत नाम किलबिक सब नासे सच नाम गुरदीनी रासे प्रभ की दरगह सोभावंते सेवक सेव सदा सोहंते। हर हर नाम जपो मेरे भाई सगले रोग दोख सब बिनसै अज्ञान अंधेरा मनते जाई रहाओ। जन्म मरण गुर राखे मीत हर के नाम सो लागी प्रीत कोट जन्म के गए कलेस ज्योतिष पावे सुफल होस तिस गुर कहो सदा बल जाई जिस प्रसाद हर नाम ते आई ऐसा गुर पाई है वडभागी जिस मिलते राम लिव लागी कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी सगल घटा के अंतर जामी आठ पहरे अपनी लिव लाए जन नानक प्रभ की शरण आए। प्रभाती महला पंजवां कृपा अपने प्रभ की है हर का नाम जपन कौ दिए आठ पहर गुण गाए गोबिंद पै बिन से उतरी सब चिंद उबरे सतगुर चरणी लाग जो गुर कह सोई पल मीठा मन की मत त्याग रहाओ। मन तन वस्या हर प्रभ सोई कल कलेश किश विघन ना होई सदा सदा प्रभ जी कै संग उत्तरी मैल नाम कै रंग चरण कमल स्यो लागो प्यार बिन से काम क्रोध हंकार प्रभ मिलन का मार्ग जाना पाए भगत हर स्यो मन माना सुन सज्जन संत मीत सुहेले नाम रतन हर अगे अतोले। सदा सदा प्रभ गुण निद गाई है कहो नानक वडभागी पाई है। प्रभाती महला पंजवां से धनवंत से सच साहा हर की दरगह नाम विसाहा हर हर नाम जपो मन मीत गुरपुरा पाईए वडभागी निर्मल पूर्ण रीत रहाओ। पाया लाभ वजी वधाई संत प्रसाद हर के गुण गाई सफल जन्म जीवन परवान गुरप्रसादी हर रंग मान। बिन से काम क्रोध अहंकार नानक गुरमुख उत्तर सपार प्रभाती महला पंजवां गुरपुरा पूरी तां की कला गुर का शब्द सदा सद अटला गुर की बाणी जिस मन वसै दुख दर्द सब तां का नसै हर रंग राता मन राम गुण गावै मुक्तो साधु तुहरी नावै रहाओ। गुरप्रसादी उतरे पार पौ परम बिन से बेकार मन तन अंतर बसे गुर चरना निरपै साध परे हर सरना आनंद सहज रसूक नेरे दुश्मन दुख ना आवै नेरे गुरपूरै अपने कर राखे हर नाम जपत किलबिख सब लाथे संत साजन सिख पए सुहेले गुरपूरै प्रभ स्यो लै मेले जन्म मरण दुख पहा काटिया कहो नानक गुर पड़दा ढाकिया। प्रभाती महला पंजवां सतगुर पूरै नाम दिया आनंद मंगल कल्याण सदा सुख कार्ज सगला रास्थिया रहाओ। चरण कमल गुर के मन उठे दुख दर्द परम बिन से झूठे नित उठ गावो प्रभ की बाणी आठ पैर हर सिमरो प्राणी घर बाहर प्रभ सबनी थाई संग सहाई जय हो जाई। दोय कर जोड़ करी अरदास सदा जपे नानक गुणतास। प्रभाती महला पंजवां पार ब्रह्म प्रभ सुड़ सुजान गुरपूरा पाईए वडभागी दर्शन कौ जाइए कुर्बान रहाओ। किलबिख मेटे शब्द संतोख नाम आराधन होवा जोग साध संग होवा प्रगास चरण कमल मन माए निवास जिन किया तिन लिया राख प्रभ पूरा अनाथ का नाथ
ਜਿਸੈ ਨਵਾਜੇ ਕਿਰਪਾ।

बिन सतगुर बाट ना पावै। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद। राग जय जयवंती महला नावा, राम सिमरो एह तेरे काज है। माया को संग त्याग प्रभजू की शरण लाग। जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है रहाओ। सुपने जो तन पछान काहे पर करतमान। बारू की पीत जैसे बसदा को राज है। नानक जन कहत बात बिन सजह है तेरो गात। छिन छिन कर गयो काल तैसे जात आज है। जय जावंती महला नावा, राम भज जन्म सिरात है। कहो कहां बार बार समझत न क्यों गवार। बिन

अमृत नाम नारायण नानक पीवतंग संतना तृपते, सहनशील संतंग समित्रस दुर्जन नानक भोजन अनक प्रकारेण निंदक आवद होए उपतिष्ठते। तिरस्कार नह पवंत मान पंगन शोभाहीन नह पवंत नह पोहंत संसार दुखन, गोविंद नाम जपंत मिल साध संग नानक से प्राणी सुख बसन। सैना साध समूह सूरा जितंग सन्ना हम तन निमृता आवदे गुण गोविंद रमणंग ओट गुर शब्द कर चरमण। आरूढ़ ते अश्वरथ नागे बुजंते प्रमार गए विचरते निरपयंग सत्र सैना तायंते गोपाल कीर्तन। जितते विश्व संसार है नानक वस्यंग क्रोध पै तस्कर। मृग तृष्णा गंधर्व नगरंग दुर्म छाया रच दुर्मत ततः कुटांब मोह मिथ्या स्मरंत नानक राम राम नाम। नच विद्या निदान निगमंग नच गुणग नाम कीर्तन। नच राग रतन कंठंग नह चंचल चतर चतर भाग उद्यम लभद्यंग माया नानक सा संग खल पंडित। कंठ रमणी राम राम माला हस्त ऊच प्रेम तारणी जी पणिजो उत्तम सलोक उदरनंग नैन नंदनी। गुरमंत्रहीन अस जो प्राणी त्रिगंत जन्म प्रष्टन कुकर सुकर गर्भ दय काक सर्पन तुल खल चरणार बिंद भजनंग हृदयंग नाम धारण कीर्तनंग साध संगे नानक नह दृष्टांत जमदूतन। नच दुर्लभंग धनंग रूपंग नच दुर्लभंग स्वर्ग राजन। नच दुर्लभंग भोजनंग बिंजनंग नच दुर्लभंग स्वच्छ अंबर। नच दुर्लभंग सुत मित्र प्रात बांधव नच दुर्लभंग बंता बिलास। नच दुर्लभंग विद्या परवीणंग नच दुर्लभंग चतर चंचल। दुर्लभंग एक भगवान नाम नानक लभद्यंग सा संग कृपा प्रभंग। जत कत तत दृष्टंग स्वर्ग मर्त पयाल लोक सर्वत्र रमणंग गोविंद नानक लेप शेप ना लिप्या ते। बिखिया पयंत अमृतंग दृष्टा सखा स्वजन दुखंग पयंत सुखियंग पै पी पंत निर्भय। थान बिहून विश्राम नामंग नानक कृपाल हर हर गुर। सर्वशील ममंगशीलंग सर्व पावन मम पावन सर्व कर्तव ममंग कर्ता नानक लेप शेप ना लिप्या ते। नह शीतलंग चंद्र देव नह शीतलंग बामन चंदन नह शीतलंग शीतरुतेण नानक शीतलंग सास्वजन। मंत्रंग राम राम नामंग ध्यानंग सर्वत्र पूर्ण ज्ञानंग सम दुख सुखंग जुगत निर्मल निर्वैरण। दयालंग सर्वत्र जिया पंच दुख विवर्जित भोजनंग गोपाल कीर्तनंग अल्प माया जल कमल रहित। उपदेशंग समित्र सत्र है भगवंत भगत पावनी पर निंदा न स्रोत श्रवणंग। आप त्याग सगल रेण कै खट लखन पूर्णंग पुरख है नानक नाम साध स्वजन। अजा पोगंत कंद मूलंग बसंते समीप केहर तत्रगते संसार नानक सो घर खंग व्यापते। छलंग शिद्रंग कोट बेगनंग अपराधंग किल बखमलंग परम मोहंग मान अपमानंग मदंग माया व्यापतंग। मृत्यु जन्म प्रमंत नरक अनक उपावंग न सिद्ध्यते। निर्मलंग साध संग है जपंत नानक गोपाल नामंग अरमंत गुण गोविंद नित प्रत।
तरन सरन स्वामी रमणशील परमेश्वर है, करण कारण समर्थ है, दान देत प्रपूर्ण है, निराश आस करण सगल अर्थ आले है, गुण निधान समरंत नानक सगल जाचंत जाचक है, दुर्गम स्थान सुगमंग महादुख सर्व सुखण है, दुर्वचन भेद परमंग साकत फसनंत सुरजन है, अस्थतंग सोगहरखंग पै खीणंत निर्भव तय अटवियंग महानगर वासंग धर्म लखण प्रमया, साध संगम राम राम रमणंग शरण नानक हर हर दयाल चरणंग, हे अजित सूर संग्रामंग अत बल ना बो मर्दन है, गण गंधर्व देव मानुख्यंग पशपंखी बेमोहन है, हर करण हारंग नमस्कारंग शरण नानक जगदीश्वर है, हे कामंग नरक विश्रामंग बहुजोनी प्रमावण है, चित हरणंग त्रैलोक गम्यंग जप तपसील विदारण है, अल्प सुख अवित चंचल ऊंच नीच समावण है, तव पह विमुंचत साध संगम ओट नानक नारायण है, हे काल मूल क्रोधंग कदंच करनाना उपर्जते बिखयंत जीवंग वस्यंग क्रोत निरत्यंग क्रोत जथा मरकट है, अनक शासन ताड़ंत जमदूत है तव संगे अदमंग नर है, दीन दुख पंजन दयाल प्रभ नानक सर्व जी रख्या करोत, हे लोबा लंपट संग सिर मोर है, अनक लहरी कलोलते तावंत जिया बहु प्रकारं अनक भांत बहु डोलते, नच मित्रंग नच हिष्टंग नच बांधव नच मात पिता तव लज्जिया, अकरण क्रोत अखाद खाद्यंग असाज्यंग साज समझिया, त्राहे त्राहे शरण स्वामी विज्ञाप्त नानक हर नर हर है, हे जन्म मरण मूलंग हे जन्म मरण मूलंग अहंकारंग पापात्मा मित्रंग तजंत सत्रंग दृढ़ंत, अनक माया विस्तीर्ण आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख वो बहुगण है, परम प्यान उद्यान रमणंग महाविकट असाध रोगण है, वैद्यंग पार ब्रह्म परमेश्वर आराध नानक हर हर हरे, हे प्राणनाथ गोविंद है कृपा निधान जगत गुरो, हे संसार ताप हरण है करुणा मैं सब दुख हरो, हे शरण योग दयाल है दीनानाथ मया करो, शरीर स्वस्थ खीण समय समरंत नानक राम दामोदर माधव है, चरण कमल शरणंग रमणंग गोपाल कीर्तन है सा संगीन तरणंग, नानक महासागर पै दुत्तर है, सिर मस्तक रख्या पार ब्रह्मंग हस्त काया रख्या परमेश्वर है, आत्म रख्या गोपाल स्वामी तन चरण रख्या जगदीश्वर है, सर्व रख्या गुरदयाल है पै दुख विनाशन है, भगत वछला नाथ नाथे शरण नानक पुरखा चुत है, जैन कला तारियो आकाशंग बैसंतरंग काष्ट बेष्टंग, जैन कला ससूर नक्षत्र ज्योतियंग सासंग शरीर तारणंग, जैन कला मात गर्भ प्रतिपालंग नैछ जंत जठर रोगण तेन कला अस्थम्भंग सरोवरंग, नानक नहश जंत तरंग तोयण गुसाई गृष्ट रूपेण सिमरणंग सर्वत्र जीवन लब्ध्यंग संत संगेण नानक स्वच्छ मार्ग हर भगतण, मस्कंग पगनंत सैलंग कर्दमंग तरंत पपील कै सागरंग लंघंत पिंगंग तम प्रगास अंध कै, साध संगेण स्मरंत गोविंद शरण नानक हर हर हरे, तिलकहीणंग जथा विपरा अमरहीणंग जथा राजन आवदहीणंग जथा सूरा, नानक धर्महीणंग तथा वैष्णव है, न शंखंग न चक्रंग न गदा न श्यामंग आश्चर्य रूपंग अरहंत जन्मंग, नेत नेत कथंत वेदा ऊंच मूचा पार गोविंद है, बसंत साध हृदयंग अचत बुझंत नानक वडभागी है, उद्यान बसनंग संसारंग संबंधी स्वान स्याल खर है, बिखम स्थान मन मोह मदरंग महा असाध पंच तस्कर है, हीत मोह पै परम परमणंग अहू फांस दीखण कठन है, पावक तो असाध कोरंग अगम तीर नय लंगन है,
ਪਜ ਸਾਧ ਸੰਗ ਗੋਪਾਲ ਨਾਨਕ ਹਰ ਚਰਨ ਸਰਨ ਉਧਰਨ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੰਤ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲੈ ਸਗਲਿਆਂ ਰੋਗ ਖੰਡਨ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਗੁਣ ਰਮਤ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਸਿਆਮਲੰਗ ਮਦਰ ਮਾਨੁਖ ਅੰਗ ਹਿਰਦਿਅੰਗ ਭੂਮ ਵੈਰਣ ਹੈ ਨਿਵੰਤ ਹੋਵੰਤ ਮਿਥਿਆ ਚੇਤਨੰ ਸਮੰਤ ਸਵਜਨ ਅਚੇਤ ਮੂੜਾ ਨਾ ਜਾਣੰਤ ਘਟੰਤ ਸਾਸਾ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੇਸ਼ ਜੰਤ ਮਹਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਇਆ ਕਾਲ ਕੰਨਿਆ ਗ੍ਰਾਸਤੇ ਹਰਚੰਤ ਪੁਰਖ ਹੈ ਕੁਟੰਬ ਲੀਲਾ ਅਨਿਤ ਆਸਾ ਵਿਖਿਆ ਬਿਨੋਦ ਪਰਮੰਤ ਪ੍ਰਮੰਤ ਜਨਮ ਹਾਰਿਓ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾਮਯ ਹੇ ਜਿਹਬੇ ਹੇ ਰਸਗੇ ਮਦਰ ਪ੍ਰਿਆ ਤੋਯੰ ਸਤ ਹਤੰ ਪਰਮ ਬਾਦੰ ਅਵਰਤ ਇਥੈ ਸੁਧ ਅਛਰਣ ਗੋਬਿੰਦ ਦਮੋਦਰ ਮਾਧਵੇ ਗਰਬੰਤ ਨਾਰੀ ਮਦੋਨ ਮਤੰ ਬਲਵੰਤ ਬਲਾਤ ਕਾਰਣ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਹਿ ਭਜੰਤ ਤਰਨ ਸਮਾਨ ਤ੍ਰਿਗ ਜਨਮਨ ਹੇ ਪਪੀਲਕਾ ਗ੍ਰਹਟੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਤੋਯੰਗ ਧਨੇ ਨਾਨਕ ਅਨਕ ਬਾਰ ਨਮੋ ਨਮੈ ਤ੍ਰਿਣੰਗ ਤਾ ਮੇਰੰਗ ਸਹਿਕੰਗ ਤਾ ਹਰਿਯੰ ਬੂਡੰਗ ਤਾ ਤਰਿਯੰ ਊਣੰਗ ਤਾ ਭਰਿਯੰ ਅੰਧਕਾਰ ਕੋਟ ਸੂਰ ਉਜਾਰੰਗ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਰ ਦਯਾਰੰਗ ਬ੍ਰਹਮਣ ਸੰਗ ਉਦਰਣੰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮ ਜੇ ਪੂਰਨ ਆਤਮ ਰਤੰ ਸੰਸਾਰ ਗਹੰ ਤੇ ਨਰ ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਲੈ ਪਰ ਦਰਬ ਹਿਰਣੰ ਬਹੁ ਵਿਘਨ ਕਰਨੰ ਉਚਰਣੰ ਸਰਬ ਜੀ ਕੈ ਲਓ ਲਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤਿਪਤ ਮਨ ਮਾਏ ਕਰਮ ਕਰਤ ਸਾਸੁ ਕਰੈ ਮਤੇ ਸਮੇਵ ਚਰਣੰ ਉਦਰਣੰ ਪੈ ਦੁੱਤਰੈ ਅਨੇਕ ਪਾਤਕ ਹਰਣੰ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗਮ ਨਾ ਸੰਸਿਐ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗਾਥਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਪੂਰ ਪੁਹਪ ਸੁਗੰਧਾ ਪਰਸ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੰ ਮਲੀਣੰ ਮੱਝਾ ਰੁਦਰ ਦੁਰਗੰਧਾ ਨਾਨਕ ਅਥਗਰ ਬੇਣ ਅਗਿਆਨਣੋ ਪਰਮਾਣੋ ਪਰ ਜੰਤ ਆਕਾਸੈ ਦੀਪ ਲੋ ਸੇ ਖੰਡਣੈ ਗਸ਼ੇਣ ਨੈਣ ਭਾਰੇਣ ਨਾਨਕ ਬਿਨਾ ਸਾਧੂ ਨਾ ਸਿਧਿਆ ਤੇ ਜਾਣੋ ਸਤ ਹੋਵੰਤੋ ਮਰਨੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਣ ਮਿਥਿਆ ਕੀਰਤ ਸਾਥ ਚਲੰਥੋ ਪੜੰਤ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਮਾਇਆ ਚਿਤ ਪਰਮੇਣ ਇਸ਼ਟ ਮਿਤਰੇਖ ਬਾਂਧਵੈ ਲਬਧਿਅੰ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਨਾਨਕ ਸੋਖਿਆ ਸਥਾਨੰ ਗੋਪਾਲ ਭਜਣੰ ਲਬਧਿਅੰ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਅਸਥਾਨੰ ਗੋਪਾਲ ਭਜਣੰ ਮੈ ਲਾਗਰ ਸੰਗੇਣ ਨਿਮ ਬਿਰਖ ਸੇ ਚੰਦਨੈ ਨਿਕਟ ਬਸੰਤੋ ਬਾਂਸੋ ਨਾਨਕ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਨਾ ਬੋਹਤੇ ਗਾਥਾ ਗੁੰਫ ਗੋਪਾਲ ਕਥੰ ਮਥੰ ਮਾਨ ਮਰਦਨੈ ਹਤੰ ਪੰਚ ਸਤਰੇਣ ਨਾਨਕ ਹਰ ਬਾਣੇ ਪਰਹਾਰਣੈ ਬਚਨ ਸਾਧ ਸੁਖ ਪੰਥਾ ਲਹੰਥਾ ਬੜ ਕਰਮਣੈ ਅਰਹੰਤਾ ਜਨਮ ਮਰਣੇਨ ਰਮਣੰ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੀਰਤਨੈ ਪੱਤਰ ਪੁਰ ਜੇਣ ਝੜੀਅੰ ਨਹਿ ਜੜੀਅੰ ਪੇੜ ਸੰਪਤਾ ਨਾਮ ਬਿਹੂਣ ਬਿਖਮਤਾ ਨਾਨਕ ਬਹੰਤ ਜੋਨ ਬਸਰੋ ਰਹਿਣੀ ਭਾਵਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਲਬੰਤੰ ਬੜ ਭਾਗਣੈ ਹਰ ਨਾਮ ਗੁਣ ਰਮਣੰ ਨਾਨਕ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੈ ਵਿਆਪਣੈ ਗਾਥਾ ਗੂੜਿਆ ਪਾਰੰ ਸਮਝਣੰ ਬਿਰਲਾ ਜਨੈ ਸੰਸਾਰ ਕਾਮ ਤਜਣੰ ਨਾਨਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਮਣੰ ਸਾਧ ਸੰਗਮੈ ਸੁਮੰਤਰ ਸਾਧ ਬਚਨਾ ਕੋਟ ਦੋਖ ਬਿਨਾਸਨੈ ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਧਿਆਨੰ ਨਾਨਕ ਕੁਲ ਸਮੂਹ ਉਧਾਰਣੈ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਸੈਣੈ ਜੇਣ ਮੱਧ ਹਰ ਕੀਰਤਨੈ ਮੁਕਤੇ ਰਮਣ ਗੋਬਿੰਦੈ ਨਾਨਕ ਲਬਧਿਅੰ ਬੰਡ ਭਾਗਣੈ ਹਰ ਲਬਧੋ ਮਿੱਤਰ ਸੁਮਿੱਤੋ ਬਿਦਾਰਨ ਕਦੇ ਨਾ ਚਿੱਤੋ ਜਾਂ ਕਾ ਅਸਥਲ ਤੋਲ ਅਮਿੱਤੋ ਸੋਈ ਨਾਨਕ ਸਖਾ ਜੀ ਸੰਗ ਕਿੱਤੋ ਅਬਜ ਸੰਗ ਮਿਟੰਤ ਸਤ ਪੁੱਤਰੈ ਸਿਮਰਤਾ ਬਰਦੈ ਗੁਰਮੰਤਰਣੈ
प्रीतम भगवान अच्युत नानक संसार सागर तारण मरणं बिसरणं गोविंद जीवनं हर नाम त्यावण लबणं साध संगेण नानक हर पूर्व लिखण दसन बिहोन पुयंगं मंत्रं गारड़ी निवारं व्याद्योपण संतं नानक लब्ध कर्मण जाथ कथ रमणं शरणं सर्वत्र जियण तथ लगणं प्रेम नानक प्रसादं गुरदर्शन चरणार बिंद मन विद्यं सिद्ध्यं सर्व कुशलण गाथा गावंत नानक पब्यं परा पूर्वण शुभ बचन रमणं गवणं साध संगेण उदरण संसार सागरं नानक पुनरप जन्म न लभ्यते वेद पुराण शास्त्र विचारं एकंकार नाम उरतारं कुलै समूह सगले उदारं वडपागी नानक को तारं सिमरणं गोविंद नामं उदरणं कुल समूहन लब्ध्यं साध संगेण नानक वडपागी पेटंत दर्शन सर्व दोख परंग त्यागी सर्व धर्म दृढ़ंतन लब्धेण साध संगेण नानक मस्तक लिखण होयो है होवंतो हरण परण संपूर्ण साधु सत्म जानो नानक प्रीत कारणं सुखैण बैन रत्नं रचनं कसुंबरंगण रोग सोग बेयोगं नानक सुख ना सुपन फुनहे महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हाथ कलम या गम मस्तक लेखावती उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती उसत कहण ना जाए मुखो तुहारिया मोही देख दर्श नानक बलिहारिया संत सभा मैं बैस के कीर्त मैं कहा अर्पी सब सिंगार एहो जियो सब देवा आस प्यासी सेज सोकंत विशाई है हर हां मस्तक होवे भाग ता साजन पाई है सखी काजल हार तंबोल सब है के साजिया सो लै किए सिंगार के अंजन पाजिया जे घर आवे कंत ता सब किश पाई है हर हां कंत है बाज सिंगार सब बिरथा जाई है जिस घर वसिया कंत सावड़ पागणे तिस बनिया हब सिंगार साई सुहागणे हौ सुती होया चिंत मन आस पुराइया हर हां जा कर आया कंत ता सब किश पाईया पाईया आस आईती आस के आस पुराइया सतगुर पै दयाल ता पूरा पाईया मैं तन अवगण बहुत के अवगण छाया हर हां सतगुर पै दयाल ता मन ठहराया कहो नानक बेअंत बेअंत ते आया दुतरे हो संसार सतगुरु तराया मिटया आवा गौण जा पूरा पाया हर हां अमृत हर का नाम सतगुर ते पाया मेरा हाथ पद्म आंगन सुख बासना सखी मोरे कंठ रतन पेख दुख नासना बासो संग गोपाल सगल सुख रास हर हर हां रिद्ध सिद्ध नव निद बसै जिस सदा कर परतरे रावण जाहे सेई ताला जिया नित प्रत हिरै पर दर्ब शिद्र कत ढाकी हर गुण रमत पवित्र सगल कुल तारई हर हां सुनते पय पुनीत पार ब्रह्म विचारई ऊपर बने आकाश तले तर सोहती दह दिस चमकै बीजल मुख जोहती खोजत फिरो बदेस पियो कत पाई हर हां जे मस्तक होवै भाग ता दर्श समाई है डिठे सबे थाम नहीं तुद जेहया बदो पुरख बिधातै ता तू सोहया वसदी सगन अपार अनूप रामदासपुर हर हां
नानक कसमल जाहे नाया रामदास सर। चात्रक चित सुचित सो साजन चाही है, जे संग लागे प्राण तिसै को वाही है। बन बन फिरते उदास बूंद जल कारणे, हर हां त्यों हर जन मांगे नाम नानक बलिहारणे। मित का चेता नूप मराम ना जानी है, गाहक गुनिया पार सो तत् पछानी है। चितै चित समाए ता होवै रंग घना, हर हां चंचल चोरै मार ता पावै सच तना। सुपने उबी पई गहयो की ना अंचला, सुंदर पुरख बराइत पेख मन बंचला। खोजो ता के चरण कहो कत पाई है, हर हां सोई जतन बताए सखी प्रयो पाई है। नैन ना देखे साध से नैन बिहालिया, करन ना सुन ही नाद करन मुंद कालिया। रसना जपे नाना तिल तिल कर कटी है, हर हां जब बिसरे गोबिंद राए दिनो दिन कटी है। पंकज फाथे पंक महामद गुंफिया, अंग संग उरझाए बिसरते सुंफिया। है को ऐसा मीत जे तोरे बिखम गांठ, नानक एक श्री तरनाथ जे टूटे ले सांठ। तावो दशा अनेक प्रेम प्रभ कारणे, पंच सतावै दूत कवन बिद मारणे। तीखण बाण चलाए नाम प्रभ त्याई है, हर हां महा बिखादी कहात पूर्ण गुर पाई है। सदगुर की नीदात मूल नानक खुट्टई, खावो पुंचो सब गुरमुख छुट्टई। अमृत नाम निदान दिता तो सहार, नानक सदा अराध कदे ना जाहे मर। जिथे जाए भगत सो थान सुहावना, सगले होए सुख हर नाम ते आवना। जी करण जयकार निंदक मोए पच, साजन मन आनंद नानक नाम जप। पावन पदत पुनीत कतै नहीं सेवी है, झूठे रंग खुआर कहां लग खेवी है। हर चंदौरी पेख काहे सुख मानिया, हर हां हां बलिहारी तिन जे दर गै जानिया। कीने कर्म अनेक गवार बेकार कहन, महा दुर्गंध तवास सठ का शार तन। फिर तो गर्भ गुबार मरण जान, हर हां हर चंदौरी पेख काहे सच मान। जिसकी पूजै औद तिसै कौन राखई, वैदक अनक्यो पाव कहां लो पाखई। एको चेत गवार काज तेरे आवई, हर हां बिन्ना मैं तनशार बिरथा सब जावई। औखद नाम अपार अमोलक पीजई, मिल मिल खावै संत सगल कौ दीजई। जिसे प्राप्त होए तिसे ही पावणे, हर हां हां बलिहारी तिन जे हर रंग रावणे। वैदा संदा संग इकट्ठा होया, औखद आए रास विच आप खलोया। जो जो ओना कर्म सुकर्म होए पसरिया, हर हां दुख रोग सब पाप तंते खिसरिया। चौ बोले महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। समन जो इस प्रेम की दम केहो होती साट, रावण होते सो रंकन जिन सिर दीने काट। प्रीत प्रेम तन खच रहया बीच नाराई होत, चरण कमल मन बेदेओ बुजन सुरत संजोग। सागर मेर उद्यान बन नवखंड बसदा परम, मूसन प्रेम परम कै गनो एक कर करम। मूसन मस्कर प्रेम की रही जो अंबर शाए, बिंदे बांदे कमल मैं
ਪਵਰ ਰਹੇ ਲਪਟਾਏ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਹਰਖ ਸੁਖ ਮਾਨ ਮਹੱਤਿਆਰ ਗਰਬ ਮੂਸਨ ਨਿਮਖਕ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੇਉ ਸਰਬ। ਮੂਸਨ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮਰਤ ਹਿਰਤ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਮ ਨਾ ਬੇਦਿਓ ਉਰਜਿਓ ਮਿਥ ਵਿਵਹਾਰ। ਕਬ ਦਬ ਜਬ ਜਾਰੀ ਐ ਬਿਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਹਾਲ ਮੂਸਨ ਤਬ ਹੀ ਮੂਸੀ ਐ ਬਿਸਰਤ ਪੁਰਖ ਦਿਆਲ। ਜਾਂ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਆਉ ਹੈ ਚਰਨ ਚਿਤਵ ਮਨ ਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਬਿਰਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਆਨ ਨਾ ਕਤਹੂ ਜਾਹੇ। ਲੱਖ ਘਾਟੀ ਉੱਚੋ ਕਨੋ ਚੰਚਲ ਚੀਤ ਬਿਹਾਲ ਨੀਚ ਕੀਚ ਨਿਮਰਤ ਘਨੀ ਕਰਨੀ ਕਮਲ ਜਮਾਲ। ਕਮਲ ਨੈਣ ਅੰਜਨ ਸਿਆਮ ਚੰਦਰ ਬਦਨ ਚਿਤ ਚਾਰ ਮੂਸਨ ਮਗਨ ਮਰਮ ਸਿਉ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਰ ਹਾਰ। ਮਗਨ ਭਇਓ ਪ੍ਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਉ ਸੂਦ ਨਾ ਸਿਮਰਤ ਅੰਗ ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਓ ਸਭ ਲੋ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਅਦਮ ਪਤੰਗ। ਸਲੋਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੇ ਇੱਕ ਓਵੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਰਸਨਾ ਉੱਪਰ ਰਾਮ ਆਜ ਜੁਗਾ ਦੀ ਸਗਲ ਭਗਤ ਤਾਂ ਕੋ ਸੁਖ ਬਿਸਰਾਮ। ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕਹੋ ਸਭ ਕੋ ਹਸਨਿਹਾਰ ਬਲਿਹਾਰੀ ਇਸ ਜਾਤ ਕਹੋ ਜੇ ਜਪਿਓ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਕਬੀਰ ਡਗਮਗ ਕਿਆ ਕਰੈ ਕਹਾਂ ਡੁਲਾਵੈ ਜੀਓ ਸਰਬ ਸੂਖ ਕੋ ਨਾਇਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਓ। ਕਬੀਰ ਕੰਚਨ ਕੇ ਕੁੰਡਲ ਬਨੇ ਉਪਰ ਲਾਲ ਜੜਾਓ ਦਿਸੈ ਦਾਂਦੇ ਕਾਨ ਜਿਉ ਜਿਨ ਮਨ ਨਾਹੀ ਨਾਓ। ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਏਕ ਆਦ ਜੋ ਜੀਵਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋਏ ਨਿਰਭੈ ਹੋਏ ਕੈ ਗੁਣ ਰਵੈ ਜਤ ਪੇਖੋ ਤਤ ਸੋਏ। ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਦਿਨ ਹਉ ਮੂਆ ਪਾਛੈ ਪਇਆ ਆਨੰਦ ਮੋਹੇ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀ ਭਜੈ ਗੋਬਿੰਦ। ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ ਜਿਨ ਐਸਾ ਕਰ ਬੂਝਿਆ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ਸੋਏ। ਕਬੀਰ ਆਈ ਮੁਜੈ ਪੈ ਅਨਕ ਕਰੇ ਕਰ ਭੇਸ ਹਮ ਰਾਖੇ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਉਨ ਕੀਨੋ ਆਦੇਸ। ਕਬੀਰ ਸੋਈ ਮਾਰੀਐ ਜੇ ਮੂਹੈ ਸੁਖ ਹੋਏ ਭਲੋ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋ ਕਹਿ ਬੁਰੋ ਨਾ ਮਾਨੈ ਕੋਏ। ਕਬੀਰ ਰਾਤੀ ਹੋਵੈ ਕਾਰੀਆ ਕਾਰੇ ਉਬੇ ਜੰਤ ਲੈ ਫਾਹੇ ਉਠ ਤਾਵ ਤੇ ਸੇ ਜਾਨ ਮਾਰੇ ਭਗਵੰਤ। ਕਬੀਰ ਚੰਦਨ ਕਾ ਬਿਰਵਾ ਭਲਾ ਬੇੜਿਓ ਟਾਗ ਪਲਾਸ ਓਏ ਪੀ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਰਹੇ ਬਸੇ ਜੋ ਚੰਦਨ ਪਾਸ। ਕਬੀਰ ਬਾਂਸ ਵਡਾਈ ਬੂਢਿਆ ਇਉਂ ਮਤ ਡੁੱਬੋ ਕੋਏ ਚੰਦਨ ਕੈ ਨਿਕਟੇ ਬਸੈ ਬਾਂਸ ਸੁਗੰਧ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਬੀਰ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਓ ਦੁਨੀ ਨਾ ਚਾਲੀ ਸਾਥ ਪਾਏ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲੇ ਆਪਣੇ ਹਾਥ। ਕਬੀਰ ਜੈ ਜੈ ਹੋਂ ਫਿਰਿਓ ਕੌਤਕ ਠਾਓ ਠਾਏ ਇਕ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ਬਾਹਰਾ ਉਜਰ ਮੇਰੇ ਪਾਏ। ਕਬੀਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਚੁੰਗੀਆ ਭਲੀ ਪਾਠਕ ਸਤੀ ਗਾਓ ਆਗ ਲਗੋ ਤੇ ਧੌਲ ਹਰ ਜੇ ਨਾਹੀ ਹਰ ਕੋ ਨਾਓ। ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਮੂਏ ਕਿਆ ਰੋਈਐ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ ਰੋਵੋ ਸਾਗਤ ਬਾਪਰੇ ਜੋ ਹਟ ਹੈ ਹਟ ਬਿਕਾਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਗਤ ਐਸਾ ਹੈ ਜੈਸੀ ਲਖਸਨ ਕੀ ਖਾਨ ਕੋਨੇ ਬੈਠੇ ਖਾਈਐ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨਿਦਾਨ। ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਡੋਲਨੀ ਪਵਨ ਵਹਿ ਹਿਵਤਾਰ ਜਿਨ ਬਿਲੋਇਆ ਤਿਨ ਖਾਇਆ ਅਵਰ ਬਿਲੋ ਬਨਹਾਰ। ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਚੋਰਟੀ ਮੁਸਮੁਸ ਲਾਵੈ ਹਾਟ ਏ ਕਬੀਰਾ ਨਾਮ ਸਹਿ ਜਨਕੀਨੀ ਬਾਰੈ ਬਾਟ। ਕਬੀਰ ਸੁਖ ਨਾ ਇਹ ਜੁਗ ਕਰੈ ਜੋ ਬਹੁਤੈ ਮੀਤ ਜੋ ਚਿਤ ਰਾਖੈ ਏਕ ਸਿਉ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਨੀਤ। ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਆਰਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਕੈ ਕਬੀਰਾ ਗਾਂਠ ਨਾ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਪਟ ਨਹੀਂ ਪਾਰਖੂ ਨਹੀਂ ਗਾਕ ਨਹੀਂ ਮੋਲ। ਕਬੀਰ ਤਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜਾਂ ਕੋਠਾ ਕਰ ਰਾਮ ਪੰਡਿਤ ਰਾਜੇ ਭੂਪਤੀ ਆਵੈ ਕੌਨੇ ਕਾਮ।
कबीर प्रीत एक स्यों किए आन दुबदा जाए, पावे लांबे केस कर पावे कर रमोड़ाए। कबीर जा काजल की कोठरी अंध परे तस्मा है, हम बलिहारी तन कौ पैस जो निक सजा है। कबीर यह तन जाएगा सको ता लेहो बहोर, नांगे पावो ते गए जिनके लाख करोर। कबीर यह तन जाएगा कवने मार्ग लाए, कह संगत कर साध की कह हर के गुण गाए। कबीर मरता मरता जग मुआ, मर पी ना जानिया कोए, ऐसे मरने जो मरे बहुर न मरना होए। कबीर मानस जन्म दुलंब है, होए न बारे बार, ज्यो बन फल पाके पोए ग्रह बहुर न लागे डार। कबीरा तुही कबीर तू तेरो नाओ कबीर, आराम रतन तब पाई है जो पहले तजै शरीर। कबीर चंख ना चंखी है तुमरो कहो ना होए, कर्म करीम जो कर रहे मेट ना साके कोए। कबीर कसौटी राम की झूठा टके ना कोए, राम कसौटी सोस है जो मर जीवा होए। कबीर उज्जल पैरे कापरे पान सुपारी खाहे, एक सहर के नाम बिन बांधे जमपुर जाहे। कबीर बेड़ा जरजरा फूटे शेंक हजार, हरुए हरुए तर गए डूबे जन सरपार। कबीर हार्ड जर

करते हुए सो होए। कबीर बैसनों की कुकर भली सागत की बुरी माए, ओह नित सुने हर नाम जस पाप बिसाहन जाए। कबीर हरना दुबला

बिन हर भगत ना मुक्त होए इउं कह रमे कबीर। कबीर मन निर्मल पया जैसा गंगा नीर, पाछै लागो हर फिरै कहत कबीर कबीर। कबीर हर दीपी अरी चूना उज्जल पाए, राम स्नेही तौ मिलै दोनों वर्ण गवाए। कबीर हर दीपी रतन हरै चून चिहन ना रहाए, बलिहारी यह प्रीत कहो जे जात वर्ण कुल जाए। कबीर

हर जन ऐसा चाहिए जो पानी सरबंग कबीर पानी हुआ ता क्या पया सिरा ताता होए। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए ऊज पवन कर कामनी शिखर तजा फहराए ताते पली मधुकरी संत संग गुण गाए। कबीर पाटन ते उजर पाला राम भगत जेठाए राम स्नेही बाहरा जमपुर मेरे पाए। कबीर गंग जमन के अंतरे सहज सुन के काट तहां कबीर है मटकिया खोज तुम जन बाट। कबीर जैसी उपजी पेड़ ते जो तैसी निभ है ओढ़ हीरा किसका बापरा पुजन रतन करोड़। कबीरा एका चंबो देखियो हीरा हट बिकाए बंजन हारे बाहरा कौडी बदलै जाए। कबीरा जहां ज्ञान तह धर्म है जहां झूठ तह पाप जहां लोभ तह काल है जहां खिमा तह आप। कबीर माया तजीता क्या पया जो मान तजया नहीं जाए मान मुनि मुनमर गरे मान सबे को खाए। कबीर साचा सतगुर मैं मिलया शब्द जो बाहया एक लागत ही पोए मिल गया पर्या कलेजे शेक। कबीर साचा सतगुर क्या करे जो सिखा मह चूक अंधे एक न लाग गई जो बस बजाइए फूक। कबीर है गए बहन सगन कहन छत्रपति की नार ताश पटंतर ना पुजय हर जन की पनिहार। कबीर निरप नारी क्यों निंदी है क्यों हर चेरी को मान ओ मांग सुवार बिखै कौ ओ सिमरै हर नाम। कबीर थूनी पाई थित पई सतगुर बंदी तीर कबीर हीरा बन जया मान सरोवर तीर। कबीर हर हीरा जन जौहरी लेके मंड हाट जब ही पाई है पारखू तब हिरन की साट। कबीर काम परे हर सिमरिय ऐसा सिमरो नित अमरापुर बासा करो हर गया बहोरे बित। कबीर सेवा को दोए पले एक संत एक राम राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम। कबीर जे मार्ग पंडित गए पाछे परी बहीर एक अवकट काटी राम की तेह चढ़ रहे हो कबीर। कबीर दुनिया के दोखे मुआ चालत कुल की कान तब कुल किसका लाज सी जबले तरह मसान। कबीर डूबे गोरे बापरे बहु लोगन की कान पारोसी के जो हुआ तू अपने पी जान। कबीर पली मधुकरी नाना बिद को नाज दावा काहू को नहीं बड़ा देश बड़ राज। कबीर दावे दा जिन होत है निर्दावे रहे निसंक जो जानो निर्दावे रहे सो ग्रह इंद्र सो रंक। कबीर पाल समूहा सरवर परा पी ना सके कोई नीर भाग बड़े तै पायो तू पर पियो कबीर। कबीर पर बाते

मुख ते राम संभाल, हाथ पाओ कर काम सब, चीत निरंजन नाल। महला पंजवा, कबीरा हमरा को नहीं, हम किसू के नाहे, जिन एहो रचन रचाया तिसी माए सुमाहे। कबीर की चढ़िया टा गिर परया, किशु ना आयो हाथ, पीस्त पीस्त चाबिया सोई निभया साथ। कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगन करे काहे की कुसलात। हाथ दीप कुए पर है, कबीर लागी प्रीत सुजान, स्यों बरजै लो गया जान, ता स्यों टूटी क्यों बने जाके जी प्राण। कबीर कोठे मंडप हेत कर, काहे मरो सवार, कार्ज साढ़े तीन हाथ, कनी ता पौने चार। कबीर जो मैं चितवो ना करे, क्या मेरे चितवे होए, अपना चितव्या हर करे, जो मेरे चेतना होए। महला तीजा, चिंता पे आप कराए सिया, चिंत पे आपे दे, नानक सो साला ही है, जे सब ना सार करे। महला पंजवा, कबीर राम ना चेते, ओ फिर या लालच माहे, पाप करंता मर गया, औद पुनी खिन माहे। कबीर काया काची कारवी, केवल काची तात, साबत रखे ता राम पाज, नाहे ता बिरठी बात। कबीर केसो केसो कुकिया, ना सोइए आसार, रात दिवस के कुकने, कबहू के सुने पुकार। कबीर काया कजली बन पया, मन कुंचर मैं मंत, अंकस ज्ञान रतन है, खेवट बिरला संत। कबीर राम रतन मुख कोथरी, पारख आगे खोल, कोई आए मिले गो गाह की, ले गो में गो मोल। कबीर राम नाम जान्यो नहीं, पाल्यो कटक कुटंब, तंदे ही मैं मर गयो, बाहर पई ना बंब। कबीर आखी केरे माटके, पल पल गई बिहाए, मन जंजाल ना छोड़ई, जम दिया दमामा आए। कबीर तारवर रूपी राम है, फल रूपी बैराग, छाया रूपी साध है, जिन तजया बाद विवाद। कबीर ऐसा बीज बोए बारे मास फलंत, शीतल छाया गहर फल, पंखी केल करंत। कबीर दाता तरवर दया फल, उपकारी जीवंत, पंखी चले दिसावरी, बिरखा सुफर फलंत। कबीर साधु संग प्राप्ति, लिखिया होए ललाट, मुक्त पदार्थ पाई है, ठाक ना या कटकाट। कबीर एक कड़ी आदि करी, आदि हूं ते आद, भगतन सेती गोष्टे, जो कीने सो लाभ। कबीर भांग माछली सुरा पान, जो जो प्राणी खाहे, तीर्थ व्रत नेम किए, ते सबै रथा तल जाहे। नीचे लोहिन कर रहो, ले सजन कट माहे, सब रस खेलो पीसो, किसी लिखावो नाहे। आठ जाम चौ सठ करी, तो निरखत रह जियो, नीचे लोहिन क्यों करो, सब कट देखो पियो। सुन सखी पी मह जियो बसे, जी में बसे के पियो, जियो पियो बुझो नहीं, कट में जियो के पियो। कबीर बामन गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाहे, अर्ज उर्ज के पचमुआ, चारो बेदो माहे। हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी ना जाए, कह कबीर गुर पली बुझाई, कीटी होए कह खाए। कबीर जो तुहे साध ब्रह्म की, शीस काट कर गोए, खेलत खेलत हाल कर, जो किश होए ता होए। कबीर जो तुहे साध ब्रह्म की, पाके से ती खेल, काची सरसों पेल के, ना खल पही ना तेल। ढूंढत डोले अंध गत, अर चिंत नाही संत, कह नामा क्यों पाई है, बिन भगतो भगवंत। हर सो हीरा छाड़ के, करे आन की आस, ते नर दो जग जाहेंगे, सत पाखे रविदास। कबीर जौ गृहो करे ता धर्म कर, नाही ता कर बैराग, बैरागी बंधन करे,
ਤਾਂ ਕੋ ਬੜੋ ਅਪਾਰ। ਸਲੋਕ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਕੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿੱਤ ਦਿਹਾੜੈ ਧਨਵਰੀ ਸਾਹੇ ਲੈ ਲਿਖਾਏ, ਮਲਕ ਜੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀ ਦਾ ਮੋਹ ਦੇ ਖਾਲੇ ਆਏ। ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਕੱਢੀ ਐ ਹੱਡਾਂ ਕੂ ਕੜਕਾਏ, ਸਾਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਚੱਲਨੀ ਜਿੰਦੂ ਕੂ ਸਮਝਾਏ। ਜਿੰਦ ਵਹੁਟੀ ਮਰਨ ਵਾਰ ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਰਣਾਏ, ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਜੋਲ ਕਹਿ ਗਲ ਲੱਗੈ ਤਾਏ। ਵਾਲੋ ਨਿੱਕੀ ਪੁਰਸਲਾਤ ਕੰਨੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਆਏ।

नमनाथ तन गुर साज समायो मां दाता गुण रवै जिन चक्र वै कहायो गुण गावै बलराओ सबत पाताल बसंतो भर थर गुण उचरै सदा गुर संग रहंतो दूरबा पुरो अंगरै गुर नानक जस गायो कब कल सुजस नानक गुर कटकट सहि समायो सवैये महल्ले दूजे के एक ओंकार सतगुर प्रसाद सोई पुरख तन करता कारण करतार करण समरथो सतगुरु तन नानक मस्तक तुम तरियो जिन हथो ता तरियो मस्तक हथ सहज आम्यो बुठो शज सुर नर गण मुन बोहि अगाज मार्यो कंटक काल गर्ज तावत लियो बर्ज पंचपूत एक कर राख ले समझ जग जीतो गुरुद्वार खेले समत सार रथ उन मानो लेव राख निरंकार कहो कीर्त काल सहार सप्त दीप मजार लहना जगत रघुर परस मुरार जा की दृष्ट अमृत तार कालख खन उतार तिमर अज्ञान जाहे दर्श द्वार ओए जो सेवै शब्द सार गाखड़ी बिखमकार ते नर पव उतार किए निरपार सत संगत सहज सार जागी ले गुर बीचार निमरी पूत सदीव परम प्यार कहो कीर्त कल सहार सबदी मजार लहना जगत्र गुर परस मुरार तैं तो दृढ़ो नाम अपार बिमल जास बिथार साधक सिद्ध सुजन जिया को आधार तू ता जनक राजा अवतार शब्द संसार सार रह जगत्र जल पदम विचार कल्पतर रोग बेदार संसार ताप निवार आत्मा त्रिविद तेरा एक लिवतार

करै तिनार सह सह समप तिनार दुलीच बह तिनार उथप बिथप सुख लह तिनार संसार में अपह पाटो रिप मद तेह सक्याथ तिनार जालप भण गुर अमरदास सो प्रसन्न जेहे तै पढ़ियो एक मन धरियो एक कर एक पछाण्यो नैन बैन मोहे एक एक दो ठाए ना जाण्यो सुपन एक प्रतख एक एक समय लीणो तीस एक अर पंज सिद्ध पैतीस ना खीणो एको जे लाख लखो अलख है एक एक कर वरण्यो गुरे अमरदास जल पण तू एक लोड़ै एक मन्यो जे मत गही जय देव जे मत नामै सम्माणी जे मत त्रिलोचन चित भगत कभी रह जानी रुक मांगत करतूत राम जंपो नित पाई अमरीक प्रहलाद शरण गोविंद गत पाई तै लोभ क्रोध तृष्णा तजी सुमत जल जानी जुगत गुरे अमरदास निज भगत है देख दर्श पावो मुक्त गुर अमरदास परसिय पोहम पातक बेनासै गुरे अमरदास परसिय से साधक आसासै गुरे अमरदास परसिय ध्यान लइए पौ मुके गुर अमरदास परसिय अपौ लब्बै गौ चुके एक बिन दुगण जो तौ रह जा सुमंत्र मान मै लह जाल पा पदार्थ इतड़े गुर अमरदास डिठै मिलै सच नाम करतार सो दृढ़ नानक संग रहे हो ताते अंगद लहना प्रगट तास चरण लिव रहे हो तित कुल गुर अमरदास आसा निवास तास गुण कमण वखाणो जो गुण अलाख्या गम तिने गुण अंत न जाणो बोए थो विधातै निर्मयो सब संगत कुल उदरण गुर अमरदास कीर्त कहै त्राहे त्राहे तो पासरण आप नारायण कलातार जग में परवरयो निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करयो जय कहते हैं परपूर सब दीपक दीपायो जे सिखै संग्रहयो तत हर चरण में लायो नानक कुल निम्बल अवतरयो अंगद लहने संग हो गुर अमरदास तारण तरण जन्म जन्म पासरण तो जप तप सत संतोख पिख दर्शन गुर सिख सरण परै ते उबरै छोड़ जमपुर की लिख भगत पाए भरपूर हृदय उचरै करतार गुर गौहर दरियाओ पलक डुबन त्य तार नानक कुल निम्मल अवतरियो गुण कर तार उचरै गुर अमरदास जिन सेवयो तिन दुख दरिद्र पर हर पर चित चितवो अरदास कहो पर कह पह ना सको सर्व चिंत तुझ पास साध संगत हौ तको तेरे हुकुम पवै निशान तव करो साहिब की सेवा जब गुर देख शुभ दिष्ट नाम करता मुख मेवा अगम अलख कारण पुरख जो फरमावै सो कहो गुर अमरदास कारण करन जिव तू रख तिव रहो पिखे के गुर ज्ञान अर ध्यान तत् स्यों तत् मिलावै सच सच जानिए एक चित्तै लिवलावै काम क्रोध वस करै पवन उडंत न तहावै निरंकार कै वसै देश हुक्म बुझ विचार पावै कल माहे रूप करता पुरख सो जानै जिन किश कियो गुर मिलियो सोए पिखा कहै सहज रंग दर्शन दियो रहयो संत हौ टोल साध बहु तेरे डिठे सन्यासी तपसी है मुखों ए पंडित मिठे बरस एक हों फिर किने नो परचो लायो कहते है कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो हर नाम छोड़ दूजे लगे तिन के गुण हों क्या कहो गुरदै मिलायो पिखिया जिव तू रखे तिव रहो पहर समाध सुनाहो ज्ञान है आसन चढ़ियो धर्म तनख कर गहयो भगत सीले सर लड़ियो पै निरपो हरा टल मानो शब्द गुर ने जा गड्यो
काम क्रोध लो मोह अपत पंच दूत बेखंडे आओ। पलो पुहाल तेजो तना निरपद नाथ नानक बार, गुर अमरदास सल पान तैं दल जितो इव युद्ध कर। कन हर बूंद बसोरो मावल, कुसुम बसंत ग्रंत न आवै। रव सस्करण उदर सागर को, गंग तरंग अंत को पावै। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के, कब जन पल उन्ह जो गावै। पल्ले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवै। सवैये महल्ले चौथे के, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक मन पुरख निरंजन त्यावो, गुर प्रसाद हर गुण सदगावो। गुण गावत मन होए बिगासा, सतगुर पूरज ने की आसा। सतगुर से परम पद पायो, अब नासी अब गाते आयो। तिस भेटे दर दरना चंपै, कल सहार तास गुण जंपै। जंपो गुण बिमल सुजन जन केरे, अमे नाम जा को फुरिया। इन सतगुर सेव शब्द रस पाया, नाम निरंजन और धरिया। हर नाम रस गोविंद गुण गाहक, चाहक तत् समत सरे। कव कल ठकर हरदास तने, गुर रामदास सरा पर परे। छुटत प्रवाह अमे अमरा पद, अमृत सरोवर सद भरिया। ते पीवै संत करै मन मज्जन, पुब जिनो सेवा करिया। तिन पहु निवार अन पै पादीना, शब्द मात्र ते उदर धरे। कव कल ठकर हरदास तने, गुर रामदास सरा पर परे। सतगुर मत गूढ़ बिमल सत संगत, आत्म रंग चलूल पया। जाग्या मन कवल सहज प्रकाशया, अपै निरंजन करै लहा। सतगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया, तिस प्रसाद वस पंच करे। कव कल ठकर हरदास तने, गुर रामदास सरा पर परे। अन पौ उन्मान अकल्यव लागी, पारस पेटिया सहज करे। सतगुर प्रसाद परम पद पाया, भगत पाए भंडार परे। मेटिया जन्मात मरण पौ भागा, चित लागा संतोख सरे। कव कल ठकर हरदास तने, गुर रामदास सरा पर परे। अपर परे पायो अपार, हृदय अंतर तारेओ। दुख पंजन आत्म प्रबोध, मन तत् विचारेओ। सदा चाहे हर पाए, प्रेम रस आपे जाने। सतगुर कै प्रसाद सहज से तीरंग माने। नानक प्रसाद अंगद समात, गुर अमर अमर वरतायो। गुर रामदास कलुचरै तैं अटल अमर पद पायो। संतोख सरोवर बसै, अमे रस रसन प्रकाशै। मिलत सांत उपजै, दुरत दूरंतर नासै। सुख सागर पायो दिनत, हर मग न हुटै। संजम सत संतोख, सील सनहु फुटै। सतगुर प्रमाण बिदने सिरयो, जग जस तूर बजायो। गुर रामदास कलुचरै तैं अपै अमर पद पायो। जग जितो सतगुर प्रमाण, मन एक त्यायो। तन तन सतगुर अमरदास, जिन नाम दृढ़ायो। निव निद नव निद नाम निधान, रिद्ध सिद्ध तां की दासी। सहज सरोवर मिलियो, पुरख भेटियो अबनासी। आदले भगत जित लग तरे, सो गुर नाम दृढ़ायो। गुर रामदास कलुचरै तैं हर प्रेम पदार्थ पायो। प्रेम भगत प्रवाह, प्रीत पुबली ना हुटै। सतगुर शब्द अथाह, अमे तारा रस गुटै। मत माता संतोख पिता, सरसै समायो। आजोनी संपावयो, जगत गुर बचन तरायो। आप गात्या गोचर अपर पर, मन गुर शब्द वसायो। गुर रामदास कलुचरै तैं जगतो धारण पायो। जगतो धारण नाम निदान, भगतै पवतारण। अमृत बूंद हर नाम, बिसकी बिखै निवारण। सहित रोवर फलयो, ज्ञान अमृत फल लागे। गुर प्रसाद पाईऐ तन ते जनवट पागे। ते मुक्ते पए सतगुर शब्द, मन गुर परचा पायो। गुर रामदास कलुचरै तैं शब्द निशान मजायो।
से सदा सहिशावान संतोख से राय चौ सदाशील सन्नाहो सो है गुर शब्द समाचर्यो नाम टेक संगाद बो है आजोनियो पालिया मालो सदगुर संग निवास गुर रामदास कलुचर तो सह सरोवर वास गुर जिन कौ सो प्रसन्न नाम हरदय निवास है जिन कौ गुर सो प्रसन्न दुरत दूर अंतर नास है गुर जिन कौ सो प्रसन्न मान अभमान निवार है जिन कौ गुर सो प्रसन्न शब्द लग पव जल तार है परचो प्रमाण गुर पायो तिन सके अथो जन्म जग श्री गुरु शरण भज कल कब भुगत मुक्त सब गुरु लग सतगुर खेमा ताणिया जुग जूत समाणे अनपौ नेजा नाम टेक जित भगत्या गाणे गुर नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे एहो राज जोग गुर रामदास तुम्हू रस जाने जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ तरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सो पावै एहो जनक राज गुर रामदास तुझ ही बने आवै सतगुर नाम एक लेव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कथ होवै जियो तारन तरन खिन मात्र जा को दृष्ट तार है शब्द रिद विचार है काम क्रोध खोवै जियो जियन सवन दाता अगम ज्ञान बिख्याता अहन इस ध्यान तावै पलक ना सोवै जियो जा को देखत दृद्र जावै नाम सो निदान पावै गुरमुख ज्ञान दुरमत मैल धोवै जियो सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो धर्म करम पूरै सतगुर पाई है जा की सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाचै शब्द सार एक लिव लाई है फुन जान को तेरा अपार निरपौ निरंकार अकथ कथनहार तुझे बुझाई है परम पूले संसार छुट्टो जूनी संगार जम को ना दंडकाल गुरमत त्याई है मन प्राणी मुग्ध विचार अहनिस जप धर्म करम पूरे सतगुर पाई है हम बल बल जाओ सतगुर साचे नाम पर कवन उपमा देओ कवन सेवा सिरेओ एक मुख रसना रसो जुग जोर कर फुन मन बच कर्म जान अंत दूजा नामान नाम सो अपार सार दिनो गुर रिद तार नल कव पारस परस कच कंचना नल कव पारस परस कच कंचना होए चंदना सुबास जास सिमरत अन तार जाके देखत दुआरे काम क्रोध ही निवारे जी हम बल बल जाऊं सतगुर साचे नाम पर राज जोग तख्त दियन गुर रामदास प्रथमे नानक चंद जग भयो आनंद तारन मनुख जन कियो प्रगास गुर अंगद दियो निदान अकथ कथा ज्ञान पंचभूत बस कीने जमत ना त्रास गुर अमर गुरु श्री सत कल युग राखी पत अग्न देखत गत चरण कवल जास सब विद्मान्यो मन तब ही पयो प्रसन्न राजयोग तख्त दियन गुर रामदास रड जिसे तारयो तरत अर व्योम अर पवन ते नीर सर अवर अनल अनाद कियो सस रेख निस सूर दिन सैल तरु फल फुल दियो सुर नर सप्त समुन्दर के तारयो त्र पवन जास सोई एक नाम हर नाम सत पायो गुर अमर प्रगास कच्चो कंचन पयो शब्द गुर श्रवण सुनयो बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख पणयो लोहो होयो लाल नदर सतगुर जा तारै पाहण मानक करै ज्ञान गुर कहो विचारै काठो श्री खंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिनके गए सतगुरु चरण जन परसिया से पस प्रेत सुर नर पए जाम गुरु है वल तने क्या गर्व दिजय जाम गुरु है वल लख बाहे क्या किजय जाम गुरु है वल ज्ञान अर ध्यान अनन पार
ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਖੀ ਸੋ ਸੱਚੈ ਘਰ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਹਿਨਸ ਜਪੈ, ਦਾਸ ਪਟ ਬੇਨਤ ਕਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਰਿਦ ਮੈਂ ਧਰੈ, ਸੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਥੇ ਰਹਿ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੈ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਗੁਰ ਕਰ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਕਰ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਗੁਰ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸਪੁੰਨ, ਅਗਨ ਕੱਟੈ ਸਭ ਤੇਰੇ, ਗੁਰ ਨੈਣ ਬੈਣ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਹੋ, ਗੁਰੂ ਸਤ ਕਵ ਨਲ ਕਹੈ, ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਨਾ ਹੋ ਕੀਓ, ਤੇ ਅਕਥ ਸੰਸਾਰ ਮਹਿ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸਮਰੱਥ ਕਲ ਯੁਗ, ਸੁਨਤ ਸਮਾਧ ਸਬਦ ਜਿਸ ਕੇ ਰਹੇ, ਫੁਨ ਦੁਖ ਨਾਸ ਸੁਖਦਾਇਕ ਸੂਰਉ, ਜੋ ਧਰਤ ਧਿਆਨ ਬਸਤ ਤੇ ਨੇਰੇ, ਪੂਰਉ ਪੁਰਖ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਸਿਮਰਤ, ਮੁਖ ਦੇਖਤ ਅਗ ਜਾਹੇ ਪਰੇਰੇ, ਜੋ ਹਰ ਬੁੱਧ ਰਿਦ ਸਿੱਧ ਚਾਹਤ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ, ਹੁਤੀ ਜੋ ਪਿਆਸ ਪੀ ਉਸ ਪਿਵੰਨ ਕੀ, ਬੰਛਤ ਸਿੱਧ ਕਉ ਬਿਦ ਮਿਲਾਇਓ, ਪੂਰਨ ਭੋ ਮਨ ਠੌਰ ਬਸੋ, ਰਸ ਬਾਸਨ ਸਿਓ ਜੋ ਦਹੰਗ ਦਿਸਤਾਇਓ, ਗੋਬਿੰਦ ਵਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਪੁਰੀ ਸਮ, ਜਲਨ ਤੀਰ ਵਿਪਾਸ ਬਿਨਾਇਓ, ਗਯੋ ਦੁਖ ਦੂਰ ਬਰਖਨ ਕੋ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਦੇਖ ਚਰਨ ਅਗਨ ਹਰਿਓ, ਨਿਸ ਬਾਸਰ ਏਕ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ, ਸੋ ਨਾਮ ਸੁਨੇ ਸੁਤ ਪਾਣ ਡਰਿਓ, ਭਨ ਦਾਸ ਸੁਵਾਸ ਜਗਤਰ ਗੁਰੂ ਕੀ, ਪਾਰਸ ਪੇਟ ਪਰਸ ਕਰਿਓ, ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਤ ਕੀਓ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਅਬ ਰਾਖੋ ਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀ ਲਾਜ, ਜੈਸੀ ਰਾਖੀ ਲਾਜ, ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੀ ਹਰ ਨਾਗ ਸਫਾਰੇ ਕਰ ਆਜ, ਫੁਨ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਸ਼ੀਨਤ ਬਸਤਰ ਦੀਨ ਬਹੁ ਸਾਜ, ਸੋ ਦਾਮਾ ਅਪਦਾ ਤੇ ਰਾਖਿਆ, ਗਨਕਾ ਪੜਤ ਪੂਰੇ ਤੇ ਕਾਜ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਲਯੁਗ ਹੋਏ, ਰਾਖੋ ਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀ ਲਾਜ, ਝੋਲਨਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਪ੍ਰਾਨੀਆ, ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਹਰ ਜਪੈ, ਨਾਮ ਨਾਮ ਨਿਦ ਅਪੈ, ਰਸਨ ਅਹਿਨਸ ਰਸੈ ਸਤ ਕਰ ਜਾਨੀਆ, ਫੁਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਪਾਈਐ, ਗੁਰਮੁਖੈ ਤੇ ਆਈਐ, ਅੰਨ ਮਾਰਗ ਤਜੋ ਭਜੋ ਹਰ ਗਿਆਨੀਆ, ਬਚਨ ਗੁਰ ਰਿਦ ਤਰੋ, ਪੰਚ ਭੂ ਬਸ ਕਰੋ, ਜਨਮ ਕੁਲ ਉਧਰੋ, ਦੁਆਰ ਹਰ ਮਾਨੀਆ, ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਭ ਸੁਖ ਇਤਯੁਤ ਤੁਮ ਬੰਛਵੋ, ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਪ੍ਰਾਨੀਆ, ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਸਤ ਕਰ, ਅਗਮ ਗੁਣ ਜਾਣ ਨਿਦਾਨ, ਹਰ ਮੰਤਰੋ ਧਿਆਨ, ਅਹਿਨਸ ਕਰੋ ਬਚਨ ਗੁਰ ਦੈ ਤਰ, ਫੁਨ ਗੁਰੂ ਜਲ ਬਿਮਲ ਅਥਾਹ, ਮੱਜਨ ਕਰੋ ਸੰਤ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਤਰੋ, ਨਾਮ ਸਚ ਰੰਗ ਸਰ, ਸਦਾ ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਸ ਕਰਤ ਦ੍ਰਿੜ ਭਗਤ ਹਰ, ਮੁਗਧ ਮਨ ਭ੍ਰਮ ਤਜੋ, ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖੋ ਭਜੋ, ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਸਤ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਹਰ ਪਾਈਐ, ਉਦਤ ਗੁਰ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਬੇਅੰਤ ਹਰ, ਨਾਮ ਨਗ ਹੀਰ ਮਨ ਮਿਲਤ ਲਿਵਲਾਈਐ, ਫੁਨ ਗੁਰੂ ਪਰਮਲ ਸਰਸ ਕਰਤ ਕੰਚਨ ਪਰਸ, ਮੈਲ ਦੁਰਮਤ ਹਿਰਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਧਿਆਈਐ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਛੁਟਕੰਤ ਸਾਧੁਆਰ ਜਿਸ, ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਬਿਮਲ ਸਰ ਸੰਤ ਸਿੱਖ ਨਾਈਐ, ਨਾਮ ਨਿਰਵਾਣ ਨਿਦਾਨ ਹਰ ਉਰ ਤਰਹੋ, ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਹੋ ਗੁਰੂ ਹਰ ਪਾਈਐ, ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਮਨ ਰੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਸੇਵ ਸੇਵ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ, ਸੁਰ ਅਸੁਰ ਗਣ ਤਰੈ ਤੇ ਤੀਸ, ਗੁਰ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੰਨ ਰੇ, ਫੁਨ ਤਰੈ ਤੇ ਸੰਤ ਹਿਤ ਭਗਤ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੈ, ਤਰਿਓ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਗੁਰ ਮਿਲਤ ਮੁਨ ਜਨ ਰੇ, ਤਰੈ ਨਾਰਦਾਦ ਸੰਕਾਦ ਹਰ ਗੁਰਮੁਖੈ ਤਰੈ, ਇਕ ਨਾਮ ਲੱਗ ਤਜੋ ਰਸ ਅੰਨ ਰੇ, ਦਾਸ ਬੇਨਤ ਕਹੈ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਲਹਿ।

श्री गुरु साहेब सब ऊपर करी कृपा, सतयुग जंत्र ऊपर श्री प्रहलाद भगत उदरियंग, हस्त कमल माथे पर तरियंग, अलख रूप जी लख्या ना जाई, साधक सिद्ध सगल सरनाई, गुर के बचन सत जी तारो, मानस जन्म देह निस्तारो, गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए, गुर प्रसाद प्रभ पाईए गुर बिन मुक्त ना होए, गुर नानक निकट बसै बनवारी तें लहना थाप जोत जगतारी, लहना पंथ कर्म का किया अमरदास पल्ले कौ दिया, तिन श्री रामदास सोडी थर थप्यो, हर का नाम अखै निद अप्यो, हर नाम अखै निद चहो जुग, गुर सेवा कर फल लहियंग, बंदे जो चरण सरन सुख पावै परमानंद गुरमुख कहियंग, प्रतख देह पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखण परणंग, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी, श्री रामदास तारण तरणंग, जेहे अमृत बचन बाणी साधु जन जप है कर बचित चाओ, आनंद नित मंगल गुर दर्शन सफल संसार, संसार सफल गंगा गुर दर्शन, परसन परम पवित्र गते जीते जम लोक पतत जे प्राणी, हर जन सेव गुर ज्ञान रते, रग बंस तिलक सुंदर दशरथ कर मुन बंछे जाकी सरणंग, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी, श्री रामदास तारण तरणंग, संसार अगम सागर तुलहा हर नाम गुरु मुख पाया, जग जन्म मरण पग्गा एह आई ही है प्रतीत, प्रतीत ही है आई जन जन कै तिनको पदवी उच पई, तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की बिरथा गई, अवलोकिया ब्रह्म परम सब छुटकिया, दिव दृष्ट कारण करणं, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी, श्री रामदास तारण तरणं, प्रताप सदा गुर का कट कट प्रगास पया जस जन कै, एक पड़े सुने गावै प्रभाते करे इशनान, इशनान करे प्रभात शुद्ध मन, गुर पूजा विद सहत करं, कंचन तन होए परस पारस कहो ज्योत स्वरूपी ध्यान तरं, जग जीवन जगन्नाथ जल थल मैं रहया पूर बहुविद वर्णं, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी, श्री रामदास तारण तरणं, जिनो बात निश्चल त्रु जानी तेई जीव काल ते बचा, तिन तरयो समुंदर रुद्र खिन एक मैं जल हर बिंब जुगत जग रचा, कुंडलनी सुरजी सतसंगत परमानंद गुरु मुख मचा, श्री गुरु साहिब सब ऊपर मन बच क्रम सेवी है सच्चा, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो, कवल नैन मदर बैन कोट सैन संग सोब, कहत मां जसोद जिसै दही पात खाहे जियो, देख रूप यातन रूप मोह महा मग पई, किंकनी शब्द चुनतकार खेल पाहे जियो, काल कलम हुकम हाथ कहो कौन मेट सकै, ईस बम ज्ञान ध्यान तरत ही है चाहे जियो, सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो, राम नाम परम धाम शुद्ध बुद्ध निरीकार, बेसुमार सर्वर कौ काहे जियो, सुथर चित भगत हित
ਪੇਖ ਧਰਿਓ ਹਰਨਾਕਸ ਹਰਿਓ ਨਖ ਵਿਦਾਰ ਜੀਓ ਸੰਖ ਚੱਕਰ ਗਦਾ ਪਦਮ ਆਪ ਆਪ ਕੀਓ ਸ਼ਦਮ ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਖੈ ਕੌਣ ਤਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹੇ ਜੀਓ ਪੀਤ ਬਸਨ ਕੁੰਨ ਦਸਨ ਪ੍ਰਿਆ ਸਹਿਤ ਕੰਠ ਮਾਲ ਮੁਕਟ ਸੀਸ ਮੋਰ ਪੰਖ ਚਾਹੇ ਜੀਓ ਬੇਵਜੀਰ ਵੱਡੇ ਤੀਰ ਧਰਮ ਅੰਗ ਅਲਖ ਅਗਮ ਖੇਲ ਕੀਆ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹੇ ਜੀਓ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਥੀ ਨਾ ਜਾਏ ਤੀਨ ਲੋਕ ਰਿਆ ਸਮਾਏ ਸੁਤੈ ਸਿਧ ਰੂਪ ਧਰਿਓ ਸਾਹਨ ਕੈ ਸਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੁਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਬਲੈ ਛਲਨ ਸਬਲ ਮਲਨ ਭਗਤ ਫਲਨ ਕਾਨ ਕੁਵਰ ਨਿਹ ਕਲੰਕ ਬਜੀ ਡੰਕ ਚੜੂ ਦਲ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀਓ ਰਾਮ ਰਵਣ ਦੁਰਤ ਦਵਣ ਸਗਲ ਪਵਨ ਕੁਸਲ ਕਰਨ ਸਰਭੂਤ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਾਦ ਦੇਵ ਸਹਿਸ ਮੁਖ ਫਨਿੰਦ ਜੀਓ ਜਰਮ ਕਰਮ ਮੱਛ ਕੱਛ ਹੋ ਬਰਾਹਾ ਜਮਨਾ ਕੈ ਕੂਲ ਖੇਲ ਖੇਲਿਓ ਜਿਨ ਗਿੰਦ ਜੀਓ ਨਾਮ ਸਾਰਹੀਏ ਤਾਰ ਤਜ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਗਿਅੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤਿ ਜੀਓ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਮਾਨ ਨਿਜ ਨਿਧਾਨ ਸੱਚ ਜਾਨ ਮੰਤਰ ਇਹ ਨਿਸਬਾਸਰ ਹੋਏ ਕਲਿਆਣ ਲਹਿ ਪਰਮ ਗਤ ਜੀਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਜਨ ਜਨ

चरण कमल सदा से ओ दृढ़ता कर मत जियो। नाम सार हिये तार तज बिकार मन ग्यंद, श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो। सेवक कै भरपूर जुग जुग, वाहगुरु तेरा सब सदका। निरंकार प्रभ सदा सलामत, कह ना सकै को तू कद का। ब्रह्मा विष्णु सिरे तैं अगणत, तिनको मोह भया मन मद का। चौरासी लख जोन उपाई, रिजक दिया सब हूं कौ तद का। सेवक कै भरपूर जुग जुग, वाह गुरु तेरा सब सदका। वाहो वाहो का बड़ा तमाशा, आपे हसै आप ही चितवै, आपे चंद सूर परगासा। आपे जल आपे थल थम्मन, आपे किया कटकट बासा। आपे नर आपे फुनारी, आपे सार आप ही पासा। गुरमुख संगत सबै बेचारा, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा। किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाहे गुरु तेरी सब रचना। तू जल थल गगन प्याल पूर रहया, अमृत ते मीठे जाके बचना। मन ब्रह्मादिक रुद्रादिक, काल का काल निरंजन जचना। गुरप्रसाद पाईए परमार्थ, सतसंगत सेती मन खचना। किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाहगुरु तेरी सब रचना। अगम अनंत अनाद, आद जिस कोए न

पंजन गण समरथ तरन तारण प्रभ सोई, नाना प्रकार जिन जग कियो जन मथुरा रसना रसै, श्री सतनाम करता पुरख गुरु रामदास चित्तै बसै। गुरु समरथ गह करिया ध्रुव बुद्ध सुमत सुमारन को, फुन त्रम तुजा फहरंत सदा अग पुंज तरंग निवारण को। मथुरा जन जान कही जी साच सो और कछु ना विचारन को, हर नाम बोहित बड़ो कल मैं पवसागर पार उतारन को। संतत ही सतसंगत संग सो रंग रते जस गावत है, धर्म पंथ तरयो तरनी तर आप रहे लिव तार ना तावत है। मथुरा पन भाग पले उनके मन इच्छित ही फल पावत है, रव के सुत को तिन त्रास कहा जो चरण गुरु चितलावत है। निर्मल नाम सदा परपूर्ण शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर, गहर गंभीर अथाह अत बड सुबर सदा साबे दर्त नागर। संत मराल करे कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर, कल जब दुर्त दूर कर बे कौ दर्शन गुरु सगल सुख सागर। जाको मन ध्यान तरे फिरत सगल जुग, कबहो को पावे आत्म प्रगास को, वेद बाणी सहत बरंच जस गावे जाको, शिव मन गहे नात जात कबलास को। जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप, जटा जूट पेख किए फिरत उदास को, सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा तारी जी नाम की बढ़ाई दई गुर रामदास को। नाम निदान ध्यान अंतर्गत तेज पुंज तेह लोग प्रगासे, देख दर्श पटक प्रम पजत दुख परहर सुख सहज बिगासे। सेवक सित सेवक सिख सदा अतलुबत, आलस मुह जो कुसम सुभासे, विद्यमान गुर आप थप्यो थिर साचो तख्त गुरु रामदास। तारियो संसार माया मद मोहत अमृत नाम दियो समरथ, फुन कीर्तवंत सदा सुख संपत रिद अर सिद्ध न छोड़े साथ। दान बड़ो अतवंत महाबल सेवक दास कयो एहो तथ, ताहे कहा परवाह काहू की जा कै बसीस धरियो गुर हथ। तीन पवन पर पूर रहो सोई, अपन सरस कियो ना जगत कोई, अपने आप ही ओ पायो सुर नर असुर अंत नहीं पायो। पायो नहीं अंत सुरे असुर नर, गण गंधर्व खो जंत फिरे, अब नासिया चाला जोनी संपाओ पुरखोत में आपार परे। करण कारण समरथ सदा सोई, सर्व जी मन त्यायो श्री गुरु रामदास, जयो जय जग में तैं हर परम पद पायो। सतगुरु नानक भगत करी एक मन तन मन धन गोबिंद दियो, अंगद अनंत मूर्त निज तारी अगम ज्ञान रस रसियो ही। गुर अमरदास करतार की

नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा पुभ भगत हर के जुगण अमरीक जय देव तरलोचन नामा अवर कबीर पण। तिन को अवतार भयो कल पिंतर जस जगत्र पर छायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तैं हर परम पद पायो। मनसा कर स्मरंत तुझै नर काम क्रोध मिट्यो जो तिन बाचा कर स्मरंत तुझै तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिण। कर्म कर तो दर्श परस पारस सरबल भट्ट जस गायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तैं हर परम पद पायो। जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटै खेन जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन। जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावै जे सतगुर सिमरंत रिद्ध सिद्ध नवनिध पावै सोई रामदास गुरबल पहन मिल संगत तन तन करो। जे सतगुर लग प्रभ पाई है सो सतगुर सिमरो न रो। जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करत ना छोड्यो पास ता ते गौहर ज्ञान प्रगट उजियारो दुख दरिद्र अंधियार को नास। कव कीर्त जो संत चरण मुड़ लागे तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास जिव अंगद अंग संग नानक गुर तिव गुर अमरदास कै गुर रामदास। जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो निसबासर हर चरण निवास ता ते संगत सगन पाए पौ मान तुमली अगर प्रगट सुबास। ध्रुव प्रहलाद कबीर त्रिलोचन नाम लैत उपजो जो प्रगास जिह पिखत अत होए रहस मन सोई संत सहार गुरु रामदास। नानक नाम निरंजन जाना कीनी भगत प्रेम लिव लाई ता ते अंगद अंग संग पयो सायर तिन शब्द सुरत की नींव रखाई। गुर अमरदास की अकथ कथा है एक जीही कश कही ना जाई सोडी सरिट सगल तारन कहो अब गुर रामदास कहो मिली बढ़ाई। हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिख।

एको ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद श्लोक वारा ते वधीक महला पहला उतंगी पै ओहरी गहरी गंभीरी ससड़।

है करकै होए करे न गल्ला पिटन सिर खोहे न नाव लैन यार करन समाए नानक तन बलहार जाए रे मंडीग ना डोली है सीधे मार्ग ताओ पाछे बग डरावनो आगे अगंत लाओ सह सह जी अरा पर रहे हो मां कहो अवर ना टंग नानक गुरमुख छुट्टी है हर प्रीतम स्यों संग बाग मरे मन मारी है जे सतगुर दिखिया होए आप पछाण हर मिले बहुन न मरना होए कीचड़ हाथ ना बुढ़ई एका नजर निहाल नानक गुरमुख उबरे गुर सरवर सच्ची पाल अगन मरै जल लोड़ लहो विण गुर ने जल नाहे जन्म मरै परमाई है जे लख कर्म कमाहे जम जागात ना लगई जे चलै सतगुर पाए नानक निर्मल अमर पद गुर हर मेलै मेलाए कलर केरी छपड़ी कौआ मल मल लाए मन तन मैला अवगुणी चिंज परी गंदी आए सरवर हंस ना जानिया काग कुपंखी संग साग स्यों ऐसी प्रीत है बुझो ज्ञानी रंग संत सभा जयकार कर गुरमुख कर्म कमाओ निर्मल नावन नानका गुरथ तीर्थ दरियाओ जन्मे का फल क्या गणी जा हर भगत ना पाओ पैंदा खांदा बाद है जा मन दूजा पाओ वेखण सुनना झूठ है मुख झूठा या लाओ नानक नाम सलाहे तू हो रहा मैं आओ जाओ हैन विरले नाही कणे फैल फकड़ संसार नानक लगी तोर मरै जीवन नाही तान छोटा सेती जो मरै लगी सा प्रवान जिसन लाए तिस लगै लगी ता प्रवान पिरम पै कामना निकलै लाया तिन सुजान भांडा तो वै कौन जे कच्चा साजिया तातू पंजर लाए कूड़ा पाजिया भांडा आण ग्रास जात पावसी परम ज्योत जागाए वाजा वापसी मनो जे अंधे कूप कहया बिरद ना जाननी मन अंधे ऊंधे कवल दिसन खरे करूप एक कह जान कहया बुझन ते नरसुर स्वरूप एक ना नाद ना बेद ना गी रस रस कस ना जान अंत एक ना सिद्ध ना बुद्ध ना अकर सार अखर का प्यो ना लहंत नानक ते नर असल खर जे बिन गुण गर्भ करंत सो ब्राह्मण जो बिंदै ब्रह्म जप तप संजम कमावै कर्म सील संतोष का रखै धर्म बंधन तोड़ै होवै मुक्त सोई ब्राह्मण पूजन जुगत खत्री सो जो कर्मा का सूर पुन दान का करै शरीर खेत पछाणै बीजै दान सो खत्री दरगै प्रवान लभ लोभ जे कूड़ कमावै अपना कीता आपे पावै तन नाथ पाए तनूर ज्यो बालन हड ना बाल सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर प्री सवाल सबनी कटी सौ वस है सहबन कट ना कोए नानक ते सुहागनी जिन्ना गुरमुख प्रगट होए जाओ ताओ प्रेम खेलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ एत मार्ग पैर त्रीजै सिर दीजै कान ना कीजै नाल किराड़ा दोस्ती कूड़े कूड़ी पाए मरना जापे मूल आयावे किते थाए ज्ञानहीन अज्ञान पूजा अंधवर्तावा पाओ दूजा गुरबिन ज्ञान धर्म बिन ध्यान सच बिन साखी मूलो ना बाकी माणू कल उठी चले साध नाही अवे ही गल राम चुरै दल मेल वै अंतर बल अधकार बंतर की सेना सेवी है मंत्र जो जयपार सीता।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला नावा गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकार्थ कीन कहो नानक हर भज मना जेह बिद जल कौ मीन बिख्यन स्यों काहे रचियो निमख ना होहे उदास कहो नानक भज हर।

तन तन संपै सुख दियो अर जेह नीके धाम कहो नानक सुन रे मना सिमरत काहे नाराम सब सुख दाता राम है दूसर नाहिन कोए कहो नानक सुन रे मना तह सिमरत गत होए जह सिमरत गत पाई है तेह पजरे तै मीत कहो नानक सुन रे मना औद कटत है नीत पांच तत् को तन रचियो जाना।

कट कट में हरजू बसै संतन कहो पुकार कहो नानक ते भज मना पौने दे उतर है पार। सुख दुख जेह पर सह नहीं लोभ मोह अभमान कहो नानक सुन रे मना सो मूर्त भगवान। उस्तत निंदया नाहे जेह कंचन लोहो समान कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान। हरख सोग जा कै नहीं बैरी मीत समान कहो नानक सुन रे मना मुक्त ता

कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। जे बिखिया सगली तजी, लियो पेख बैराग। कहो नानक सुन रे मना, तेह नर माथे पाग। जे माया ममता तजी, सब ते पयो उदास। कहो नानक सुन रे मना, तह कट ब्रह्म निवास। जह प्राणी हौ मैं तजी, करता राम पशान। कहो नानक वह मुक्त नर, एह मन सा

एहो मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। जो उपजियो सो बिरस है परों आज कह काल। नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। दोहरा बल छुटक्यो बंधन परे कशु न होत उपाय। नानक सब किश तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय। संग सखा

टेक एक रघुनाथ। नाम रहयो साधु रहयो रहयो गुर गोबिंद। कहो नानक एह जगत में किन जपयो गुरमंत। राम नाम उर में गहयो जा कै सम नहीं कोए। जेह सिमरत संकट मिटै दर्स तुहारो होए। मुंदावणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पईयो। सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकर का पयो। जिसका सबस आधारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो। एहे वस्त तजी नह जाई नित नित रख उर तारो। तम संसार चरण लगतई है सब नानक ब्रह्म।

एक ओंकार सदगुर प्रसाद राग माला राग एक संग पंच बरंगन संग अलाप आठो नंदन प्रथम राग पैरो वै करही पंच राग नी संग उचरही प्रथम पैर भी बेलावली पुनिया की गावे बंगली पुन असलेखी की पई बारी ए पैरों की पंचो नारी पंचम हरख दिशाख सुनावे बंगालम मदमाद वगावे ललत बिलावल गावही अपनी अपनी पांत अष्टपुत्र पैरव के गावे गाय पात्र द्वितीया माल कौशकिया लाप संग रागनी पांचौ थाप गोंड करी अरदेव गंधारी गंधारी सी हुती उचारी तनासरी ए पांचौ गाई माल राग कौशक संग लाई मारू मस्त अंग मेवारा परबल चंड कौशको बारा खौ खटियाओ पौरा नद गाए अष्टमाल कौशक संग लाए पुन आयो हिंडोल पंचनार संग अष्ट सुत उठह तान कलोल गायन तार मिला वही तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस अहीरी ले पार जा संग लाई पांचो वार जा सुरमानंद पास कर आए चंद्रबिंब मंगलन सोहाए सरस बान औ आहे बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्टपुत्र मैं कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी

मेघराज पुत्रन के नामा खष्ट रागियों गाए संग राग नीतीस सब पुत्र रागन के अठारह दस बीस खष्ट रागियों गाए संग राग नीतीस सब पुत्र रागन के अठारह दस बीस। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

अरदास एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई ते आए फिरंगत गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठै शब्द खुजाए तेग बहादुर सिमरै कर नाम दयावै ताए सब थाई हुई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पंथ दे वाली सब थाई हुई सहाय दसा पातशाहियां के स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। गुरु साहिब जी दे पंज प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हठियां जपियां तपियां जिन्हां ने तेरा नाम जपिया वंड के छकिया देग चलाही तेग वाही देख के अंडिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान करके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां ध्यान करके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेसी दिते बंद बंद कटवाए चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चिराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान करके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। आप जी दे गुरसिखां नूं गुरसिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नामदान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान आप जी दे गुरसिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पतकारा खा पाकाल पुरख वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। नाम चितावै चितावन का सदका सर्व सुख होवै बिरद की पैज रहे पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान करके खालसा साहिब बोलो श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। हे महाराज श्री निरंकार ज्योति स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी दसा पातशाहियां के स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे हजूर ऐस वक्त अरदास बेनती है आप जी ने महान बख्शिश कीती है पातशाह जीओ आप जी दा ओट आसरा लैंदिया होया सेवक परिवार ने सहज पाठ आरंभ करवाया सी सहज पाठ दी सीडी दी सेवा कीती है सीडी बनाण दी सेवा करदिया अनेका भुल्लां होईयां होणगियां गुरु अते गुरु की संगत बख्शण योग है पाठ दा फल सेवक परिवार नूं बख्शण दी कृपालता करनी जी पाठी सिंह पासों पाठ करदिया अनेका भुल्लां होईयां होणगियां गुरु अते गुरु की संगत बख्शण योग है बख्शण दी कृपालता करनी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आप जी ने महान बख्शिश कीती है सहज पाठ दी निर्विघ्नता सहित समाप्ति हुई है सेवक परिवार वालों आप जी नूं सोहणे रुमाले पछाके हाजिर होए हन आप जी ने अंगीकार करने

0: बोले सोनिहाल सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ, सो कहो टल गुर सेवी अहनस सहज सुभाए, दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख जाए। टोडी महला पंजवां, माई मेरे मन को सुख, कोट आनंद राज सुख भुगवै, हर सिमरत बिनसै सब दुख। माई मेरे मन को सुख, कोट आनंद राज सुख भुगवै, हर सिमरत बिनसै सब दुख। रहाओ कोट जन्म के किल बिख नासै, सिमरत पावन तन मन सुख। देख स्वरूप पूर्ण भई आसा, दर्शन भेटत उत्तरी भुख। चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध, काम तेन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध, काम तेन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: You are listening to SeekNet Radio.

अहंकार, असंख जाप, असंख पाव, असंख पूजा, असंख तपताव, असंख ग्रंथ, मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती, असंख दातार, असंख सूर मुह पख सार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कवन कहां विचार, वारिया न जावा एक बार, जो तुद पहावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पख खाहे,

अमूल गुण अमूल व्यापार अमूल व्यापार ये अमूल भंडार अमूल आवहे अमूल ले जाहे अमूल पाए अमूला समाहे अमूल धर्म अमूल दीवान अमूल तुल अमूल प्रवाण अमूल बख्शीस अमूल निशान अमूल कर्म अमूल फुरमान अमूलो

विचारे गावह चित गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे गावह ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सुवारे गावह इंदासन बैठे देवतियां दरनाले गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सति संतोखी गावह वीर करारे गावन पंडित पढ़ नरखी सरे

गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध बिचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सर जोग

जिन निरपहो जिन हर निरपहो त्याया जी तिनका पहो सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे।

जिन कौ सतगुरु थापिया तिन मेट न सकै कोय। ऊना अंदर नाम निदान है नामो प्रगट होए। नाओ पूजिए नाओ मनिए अखंड सदा सच सोए।

तन मन गुर पह वेचिया मन दिया सिर नार त्रिपवन खोज ढंडोलिया गुरमुख खोज निहाल सतगुर मेल मिलाया नानक सो प्रभ नाल श्री राग महला पहला।

नाम निदान अंतर हर रस रव रहया चूका मन अभिमान हृदय कमल प्रगासिया लागा सहज ध्यान मन निर्मल हर रव रहया पाया दरगह मान सतगुर सेवन अपना ते विरले संसार हों मैं ममता मार कै हर डाक्या उरतार हों तिन

रते से निर्मले हों सद बलिहार है जास। हृदय जिनका हर बसै तित कट है परगास। मन मेरे हर हर निर्मल त्याय, धुर मस्तक

गुरमत हर लिव उबरे अलिप्त रहे सरनाए ओनी चलन सदा निहालिया हर खर्च लिया पत पाए गुरमुख दरगाह मन्नी है।

आप हुआ मेहरबान, सच महल कर पाया गुर का शब्द पछान। भगत जना कौ राखदा अपनी कृपा तहार, हलत पलत मुख उजले साचे के गुणसार। आठ पहर गुणसार दे रते रंग अपार, पार ब्रह्म सुख सागरो नानक सद बलिहार। श्री राग महला पंजवा पूरा सतगुर जे मिलै पाइय शब्द निदान। कर कृपा प्रभ अपनी जपिय अमृत नाम, जन्म मरण दुख काटिय लागे सहज ध्यान। मेरे मन प्रभ शरणाई पाए, हर बिंदु जाको नहीं एको नाम त्याए। रहाओ कीमत कहन न जाइय सागर गुणी अथाह, वडभागी मिल संगति सच्चा शब्द विसाह। कर सेवा सुख सागर सिर शाह पातशाह, चरण

नाम अमृत नदर निहाल मन मेरे सदगुर सेवा सार करे दया प्रभ अपनी एक निमख न मनहो विसार रहा।

साची पूंजी सच संजमो आठ पहर गुण गाओ कर कृपा प्रभ पेटिया मरन नावन जाओ मेरे मन हर भज सदा एक रंग घट घट अंतर रव रहया सदा सहाई संग रहा।

राजन रिंद अवसर हर जस गुण रमन जित कोट मजन इशनान रसना उचरै गुणवती कोई न पुजै दान दृष्ट तार मन तन वसै दयाल पुरख मेहरवान।

गुर जेवड़ अवर न को दूजा थाओ ना को सुजै गुर मेले सच सोए रहाओ। सगल पदार्थ तिस मिले सगल पदार्थ तिस मिले जिन गुर डिठा जाए गुर चरणी जिन मन लगा सेवड पागी माए। गुरदाता समरथ गुर गुर सब मह रहया समाए गुर परमेश्वर पार ब्रह्म गुर डुबदा लय तराए। कित मुख गुर साला ही है करण कारण समरथ से मथे ने चल रहे जिन गुर तारिया हाथ गुर अमृत नाम पिया लिया जन्म मरण का पथ। गुर परमेश्वर सेविया पै भंजन दुख लथ सतगुर गहर गंभीर है सुख सागर अग खंड जिन गुर सेविया अपना जमदूत न लागे डंड। गुर नाल तुल न लगई खोज डिठा ब्रह्मांड नाम निधान सतगुर दिया सुख नानक मन महमंड। श्री राग महला पंजवां।

तिस हत्या बहु मन मेरे सर्ब को आधार। गुर के चरण मन माहे त्याय, गुर के चरण मन मह त्याय, छोड़ सगल सियान पा साज शब्द लिबलाए। रहाओ दुख क्लेश ना पौ व्यापै, गुर मंत्र हृदय होए, कोट जतना कर रहे गुर बिन तरयो ना कोए। देख दर्शन मन साधारे, पाप सगले जाहे, हौं तिन कै बलिहार नै जे गुर की पैरी पाहे। साध संगत मन बसै साच हर का नाउ, सेवड भागी नानका जिन्ना मन इहो पाओ। श्री राग महला पंजवां, संच हर तन पूज सतगुर, छोड़ सगल विकार, जिन तू साज सवारिया हर सिमर होए उधार।

करणी सार, आप छोड़ सब होए रेणा जिस देव प्रभ निरंकार, जो दिसै सो सगल तू है पसर या पासार, कहो नानक गुर परम काटिया सगल ब्रह्म विचार, श्री राग महला पंजवां।

रहाओ। मान अभिमान मंधे सो सेवक नाही, तत समदर्शी संत हो कोई कोट मंदाही। कहन कहावन इहो कीरत करला, कथन कहन ते मुक्ता गुरमुख कोई बिरला। गात अवगत कश नदर ना आया, संतन की रेण नानक दान पाया। श्री राग महला पंजवा घर सतवा, तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लडाया। भूलह चूकह बारक तू हर पिता माया, सुहेला कहन कहावन तेरा बिखम पावन रहाओ। हौ मान तान करौ तेरा हौ जानो आपा, सभी मद सभै ते बाहर बे मोहताज बापा। पिता हौ जानो नाही तेरी कवन जुगता बंद।

हथ वडियाइया पूर्व लिखिया पाए सच करता सच करण हार सच साहिब सच टेक सचो सच बखाणिए सचो बुद्ध विवेक सर्ब निरंतर रव रहया जप नानक जीवै एक श्री राग महला पंजवा।

सच्चा नाम सास गिरास न विसरै सफल मूर्त गुर आप गुर जीवड अवर न दिसई आठ पहर तिस जाप नदर करे ता पाईऐ सच नाम गुणतास।

नानक गुरु शरणागति मरै नहावै जाय। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग महला पहला घर पहला अष्टपदियां आख आख मन भावना ज्यों ज्यों जापै वाए जिसनो वाए सुनाई है सो केवड कित थाए आखण वाले जेतड़े सब आख रहे लिवलाए।

दर दर वेश रसीद बरकत तिनको अगली पढ़दे रहन दरूद बरकत तिनको अगली पढ़दे रहन दरूद पूछना साजे पूछना टाहे पूछना दे वैले अपनी कुदरत आपे जाने आपे करन करे सबना

जाए, नेत्र वै सुहागणी साची नदर रजाए, साच धड़ी मन धन मांडी है, साच धड़ी धन मांडी है, कापड़ प्रेम सिंगार चंदन चीत बसाया, मंदिर दसवां द्वार दीपक शब्द विगासया, राम नाम उरहार नारी।

बिन गुर कर्म न छुट सी कह सुन आथ बखान। सब गुणवंती आखी है मैं गुण नाही कोय, हर वर नार सुहावनी मैं पहावै प्रभ सोय। नानक शब्द मिला बड़ा नावे छोड़ा होए। श्री राग महला पहला।

सार हाट पटनगढ़ कोठड़ी सच सौदा व्यापार ज्ञान अंजन पै पंजना देख निरंजन पाए गुप्त प्रगट सब जानिए जे मन राखे ठाए ऐसा।

पतार मान रे राम जप हो सुख हो बिन गुर प्रेम न पाई शब्द मिले रंग हो रहा गुर सेवा सुख पाई है हर वर सहज सिंगार सच माने तिर से जड़ी गूड़ा हेत प्यार गुरमुख जान सियाणी गुर मेली गुण चार साच

मन महमनुआ जे मरे ता फिर रावे नार इकत ता दैरल मिले गल मोतियन का हार संत सभा सुख उपजय गुरमुख नाम आधार खिन मह उपजय खिन खपे खिन आवे खिन जाए शब्द पछाण।

पीर रे मन ऐसी हर्ष्यो प्रीत कर जैसी चात्रक में सार पार थल हरियावले एक बूंद न पवै खे सार पार थल हरियावले।

अमृत संतोखिया दरगाह पैंदा जाए। कट कट वाजे चुंगरी आनंदन शब्द सुपाए, विरले कौसव जी पई गुरमुख मन समझाए। नानक नाम ना विसरै छूटै शब्द कमाए, श्री राग महला पहला चित्ते जिस है तौल हर, बगे बंक द्वार कर मन।

बहुता जीवन मंगिया मुआ न लोड़ै कोय, सुख जीवन तिस आखिया जिस गुरमुख वसया सोए, नाम विहूणे क्या गणी जिस हर गुर दर्शना होए, ज्यों सुपने निस भुलिया जब तक निंद्रा होए, इउं सरपन कै बस जियड़ा अंतर हो मैं दोए, गुरमत होए विचारिय सुपना इहो जग लोए।

मनमुख पत गवाई, बिन सतगुर को मग न जाने अंधे ठौर न काई, हर सुखदाता मन नहीं वसिया अंत गया पछताई। तेई अड़े जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया, आन दिन भगत कर

पंखी बिरख सुहावड़े उड़ह चौदस जाए, जेता उड़ह दुख कणे नित दाज है तै दिल लाहे। बिन गुर महल ना जापई ना अमृत फल पाहे, गुरमुख ब्रह्म हरियावला साचै सहज सुभाए। शाखा तीन निवारिया एक शब्द लिवलाए, अमृत फल हर एक है आप देखवाए। मनमुख उबे सुख गए ना फल तिन्ना छाऊ, तिन्ना पास न बैसिए ओना कर ना गिराऊ। कटिय है तै नित जालिय है ओना शब्द ना नाऊ।

समाए हर निर्मल अत उजला बिन गुर पाया ना जाए पाठ पढ़े ना बुझई भेखी परम भुलाए गुरमति हर सदा पाया रसना हर रस

ब्रह्म जाए। नाम पदार्थ पाई गुरमुख सहज सुभाए, बिन गुर गुण ना जापनी, बिन गुण भगत ना होए, भगत वछल हर मन वसया, सहज मिलिया प्रभ सोए। नानक शब्दे हर सा लाहिए, कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा, माया मोह मेरा प्रभ कीना, आपे भरम पुलाए। मनमुख कर्म करह नहीं बूझ है, बिरथा जन्म गवाए। गुरबाणी इस जग मह चान।

राता। प्रभु निकट वसै सबना घट अंतर गुरमुख विर लै जाता। नानक नाम मिले वडियाई गुर कै शब्द पछाता। श्री राग महला तीजा सहज।

गुर कै शब्द जीवत मरै, गुरमुख पव जल तरण। वड्डै भाग नाउ पाइय, गुरमत शब्द सुहाई। आपे मन वसिया प्रभ करता, सहजे रहया समाई। इकना मनमुख शब्द न पावै।

जांको चिंता बहुत बहुत देही व्यापै रोग ग्रस्त कुटुंब पलेटिया कदे हरख कदे सोग गौण करे चहुं।

जियो। हो सतगुर विट हो कुमाया, जिन भ्रम भुला मार्ग पाया। नदर करे जे अपनी, आपे लैर लाए जियो। तू सबना माहे समाया, तिन करतै आप लुकाया। नानक गुरमुख प्रगट होया, जां कौ जोत धरी करतार जियो। आपे खसम निवाजया, जियो पिंड दे साजया। अपने सेवक की पैज रखिया, दोए कर मस्तक धार जियो।

उठा लिया हुक्मी भांडे साजिया तू आपे पन सवार जियो जिन सतगुर स्यों चित लाया तिन दूजा भाव चुकाया जिन

जियो। हर इठे नित ध्याएंदा, मन चिंदी सो फल पाएंदा। सबे काज सवारियन, लाहियन मन की भुख जियो। मैं छड़िया सबो तंदड़ा, गुसाई सेवी सचड़ा।

मात पिता सुत हेत, मात पिता सुत ने कनेरा माया मोह सबाई, संजोगी आया किरत कमाया करणी कार कराई। राम

करम धर्म नहीं पूजा। नानक पाए भगत निस्तारा, दुविधा व्यापै दूजा। तीजै पहरै रैण कै बनजारिया मित्रा, सर हंस उलथड़े आए। जोबन घटै जरुआ जणै, बनजारिया मित्रा। आम घटै दिन जाए, अंत काल पछतासी। अंधले जां जम पकड़ चलाया।

जित आसिर जुग जुग होव हो। हर से तीसद मान हो रलियां, जन्म मरण दुख खोव हो। गुर सत गुर स्वामी भेद न जान हो, जित मिल हर भगत सुखांदी।

रूप मिटाया, चित्र गुप्त का कागद फारिया, जम दूता कछू ना चली, नानक सिख दे मन प्रीतम, हर लदे खेप सवली, मन प्यारिया जीओ मित्रा, कर संतां संग निवासो, मन प्यारिया जीओ मित्रा, हर नाम जपत परगासो, सिमर

सतगुर तुठे लड़ली ने लाए नौ निद पाए नाओ सर्वस ठाकुर दीना नानक सिख संत समझाई हर प्रेम भगत मन लीना श्री राग के।

अधारे गुण साध संग मिल गावे। नानक के स्वामी तार अनुग्रहो मन तन अंक समावे। दखना सो हंदड़ो हब ठाए कोय न दिसे डूजड़ो खुलड़े कपाट नानक सतगुर भेट ते शन।

मोहयो हो जस नानक आप सुनियो हे संत प्रेम ठगौरी पाए रिझाए गोविंद मन मोहया जियो संतन कै प्रसाद अगाध कंठे लग सोहया जियो हर कंठ लग सोहया दोख सब जोहया भगत लखियन कर बस पए मन सब सुख बुठे गोविंद तुठे जन्म मरना सब मिट गए।

हर रंग रत हर त्याव हो हर प्रभ सत गुरबचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत रहाओ जिनको पूर्व लिखिया से आए मिले गुर पास सेवक पाए बन जा रिया मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास तन तन वणज।

अपार रतन अमोलक पाया गुर का शब्द विचार जिहवा सच्ची मन सच्चा सच्चा शरीर अकार नानक सच्चा सद

मन मूर्ख मिलै सजाए। जिन जियो पिंड दिता तिस कब हू ना चेतै, जो देंदा रिजक संबाहे। जम का फाहा गल हुन कटिए, फिर आवै जाए। मन मुख किशु न सूजै अंधले।

कमाए, कूड़ कुसात कमाए, गुर प्रसादी मन जने हर से पीले बलाए। नानक गुरमुख सच कमावे, मन मुख आवे जाए पौड़ी। हर के संत सुन हो जन पाई, हर सतगुर की एक साखी। जिस तुर भाग होवे मुख मस्तक, तिन जन लय हृदय राखी। हर अमृत कथा श्रेष्ठ ऊतम।

देओ पूजिए बिन सतगुर बूझ ना पाए। जब तब संजम पाणा सतगुरु का करमी पल्ले पाए। नानक सेवा सुरत कमावणी, नानक सेवा सुरत कमावणी, जो हर पावे सो थाए पाए पौड़ी। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित सदा सुख होवे दिन राती। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित सिमरत सब किल विख पाप लहाती। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित दालद दुख भुख सब लह जाती।

कनक कलश एक पाया तिसमह तार चुवै अत निर्मल रसमह रसन चुआया एक जो बात अनूप बनी है पवन प्याला साजया तीन पवन मह एको जोगी कहो कवन है राज।

तौ आन सकत गल बांधिया। तरुण तेज पर त्रै मुख जो है सार अवसर ना पछाणिया। उन्मत काम महा बिख भूलै पाप पुन ना पछाणिया। सुत संपत देख इहो मन गर्बिया राम हृदय ते खोया। अवर मर्त माया मन तोले तौ भग मुख जन्म बगोया।

साई मिल सतसंगत खोजत साई विच संगत हर प्रभव सह जियो मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला हम बारिक दीन करहो प्रतपाला मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा गुर जल मिल कमल।

जन नानक गुर मिल रहस्य जियो। माज महला चौथा, हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए, हर हर नाम कथा नित सुनिए। मिल सतसंगत हर गुण गाए, जग पौजल गुत्तर तरिए जियो। आओ सखी हर

अमृत रस सच अमृत बोली गुर पूरै अमृत लीचै जियो। हर सत संगत सत पुरख मिलाइए मिल सत संगत हर नाम ते आइए। नानक हर कथा सुनी मुख बोली गुरम

तू आपे गुरमुख मुक्त कराए हैं, तू आपे मन मुख जन्म पवाए हैं। नानक दास तेरा बलिहारै, सब तेरा खेल दसहरा जियो। माज महला पंजवा, अनहद वाजै सहज सुहेला। शब्द आनंद करे सद केला, सहज गुफा महताड़ी लाई। आसन ऊच सवारया जियो, फिर घिर अपने ग्रह में आया। जो लोड़ींदा सोई पाया, तृप्त अगाए रहया है संत हो। गुर अनुभव पुरख दिखारया जियो, आपे राजन आपे लोगा। आप निर्वाणी आपे भोगा, आपे तख्त बह सच न्याई। सब चूकी कूक पुकारया जियो, जेहा डिठा मैं ते हो कहया। तिस रस आया जिन भेद लहया,

अतोले अकाल मूर्त अजूनी संभव मन सिमरत ठंडा थी मां जियो। सदा संगी हर रंग गोपाला ऊंच नीच करे प्रतपाला।

तुम दाते तुम पुरख बिधाते तुम समरथ सदा सुख दाते सबको तुम ही ते बरसावे अवसर करो हमारा पूरा जियो दर्श

संत खेल है तुम संग गोपाला, अपने संत तुद खरे प्यारे, तू संतन के प्राणा जियो, उन संतन कह मेरा मन कुर्बाने, जिन तू जाता जो तुद मन पाने, तिन कह संग सदा सुख पाया, हर रस नानक तृप्त अगाना।

पात्रक तिखहारे तुमरी आस प्यासा तुमरी तुम ही संग मन लीना जियो। ज्यों बारिक तीखीर अगावै ज्यों निर तन तन देख सुख पावै त्रिखावंत जल पीवत ठंडा त्यों हर संग इहो मन पीना जियो। ज्यों अंधियारै दीपक परगासा परता चितवत पूरन आसा मिल प्रीतम ज्यों होत आनंदा त्यों हर रंग मन रंगीना जियो। संतन मोको हर मार्ग पाया साध कृपाल हर संग गिजाया हर हमरा हम हर के दासे हर हमरा हम हर के दासे नानक शब्द गुरु सच दीना जियो। माज महला पंजवा अमृत नाम सदा निर्मलिया सुखदाई दुख बिडारन हरिया अवर साध चख।

तगले देखे मन हर रस सब ते मीठा जियो जो जो पीवै सो तृप्तावै अमर होवै जो नाम रस पावै नाम निधान तिस है प्राप्त जिस शब्द गुरु मन बूठा जियो जिन हर रस पाया सो तृप्त अघना जिन हर साध पाया सो नाहे डोलाना

रे तिस लग मुक्त भए कनेरे नाम निधाना गुरमुख पाइय कहो नानक विरली डीठा जियो माज महला पंजवा निध सिद रिद हर हर हर मेरा जन्म पदार्थ गैर गंभीर है लाख कोट खुशियां रंग रावे जो गुर लागा पाई जियो जो गुर लागा पाई जियो दर्शन पेखत पए पुनीता सगल उधारे पाई मीता अगम अगोचर स्वामी अपना गुर कृपा ते

ठाकुर सब बिद जान है, ठाकुर के सेवक हर रंग मान है। जो किश ठाकुर का सो सेवक का, सेवक ठाकुर ही संग जा हर जियो। अपने ठाकुर जो पहराया, बहुर न लेखा पुछ बलाया। इस सेवक कै नानक कुर्बानी, सो गहर गंभीरा गौहर जियो। माज महला पंजवा, सब किश कर्म है बाहर नाही, बाहर टोले सो परम पुलाही।

सद बिचारा आनंद विनोद करे दिन राती सदा सदा हर के ला जियो जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया साध कृपा ते सूका हरिया।

माज महला पंजवा जी प्राण प्रभ मन है अधारा भगत जीव है गुण गाए अपारा गुण निदान अमृत हर नामा हर त्याए त्याए सुख पाया जियो मनसा धार जो करते आवे साध संग जन्म मरण मिटावे आस मनोरथ पूर्ण होवे पेटत गुरदर साया जियो अगम अगोचर किश्मित नहीं जानी साधक सिद्ध त्याव है ज्ञानी।

भेटत संग साध संतन कै सदा जपौं दयाला जियो प्रभ अपना सास सास समारौं ए मत गुर प्रसाद मन धारौं।

सबल एहा है कारी जियो, दृष्ट धार अपना दास सवारिया, घट घट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया, एक सविण होर दूजा।

जाप अलख अपेवा काम क्रोध किलबिख गुर काटे पूर्ण होई आसा जियो पूर्ण भाग पय जिस प्राणी साध संग मिले सारंग पानी नानक नाम वस्या।

सो गुर मिल निहचल कहना, प्रेम भगत जिस कै मन लागी, गुण गावे अन दिन नित जागी, बहां पकड़ तिस स्वामी मिले, जिस कै मस्तक लहना, चरण कमल भगता मन उठे, बिन परमेश्वर सगले मुठे, संत जना की धूड़ नित बांछ है, नाम सच्चे का गहना, उठत बैठत हर हर गाइय।

लख चौ रासी जी उपाए, जिसनो नदर करे तिस गुरु मिलाए। किलबिख काट सदा जन निर्मल, दर सच्चे नाम सुहावणिया।

मनमुख पाप पचा बनिया एक रंग राते जो तुद आप लिव लाए पाए भगत तेरे मन पाए सतगुर सेवन सदा सुखदाता सब इच्छा आप पूजा बनिया हर जियो तेरी सदा शरणाई आपे बख्श हैं दे वड्याई जम

निर्विख अवगण काटन हारा प्रेम प्रीत सदा त्याई पै पाए भगत दृढ़ा बणिया तेरी भगत सच्ची जे सच्चे पावे।

मानमुख मुगद करह चतराई ना ता तोता थाए ना पाई जेहा आया तेहा जासी कर अवगण पछोता बनिया मानमुख अंधे किशु ना सूझै मरण लिखाए आए नहीं बूझै मानमुख कर्म करे

अमृत शब्द अमृत हर बाणी, सतगुर सेवै हृदय समाणी। नानक अमृत नाम सदा सुख दाता, पी अमृत सब भुख लह जा बणिया। माझ महला तीजा, अमृत वर्ष।

अमृत नाम मन बसावणिया, अमृत नाम महारस मीठा, गुरमति अमृत पियावणिया। राव हौ मैं मार बजर कपाट खुलाया, नाम अमोल।

रहाओ। गुरमुख जीवै मरै परवान, आरजा ना छीजै शब्द पछाण। गुरमुख मरै ना काल ना खाए, गुरमुख सच समावणिया। गुरमुख हर दर शोभा पाए, गुरमुख विचहु आप गवाए। आप तरै कुल सगले तारे, गुरमुख जन्म सवारणिया। गुरमुख दुख कदे ना लगै शरीर, गुरमुख होमै चूकै पीर। गुरमुख मन निर्मल

गुरमत हर रस पावणिया इस गुफा मह एक थान सुहाया पूरा गुर हौमै भरम चुकाया आन बिन नाम सलाहन रंग रात।

आठ पहर तुद जापे पवना धरती सेवक पायक चरणा खाणी बाणी सर्व निवासी सबना कै मन पावणिया साचा साहिब गुरमुख जापै पूरे गुर कै शब्द सियापै जिन पिया से ही तृप्ता से सच्चे सच अगावणिया तिस कर सहज

कौन कर्म कौन निष्कर्मा, कौन सो कहे कहाए जियो, कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया, कौन सो सन्मुख कौन वे मुखिया, किन विद मिले।

गुरमुख कर्म गुरमुख नेह कर्मा गुरमुख करे सो सुभाए जियो गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया गुरमुख मिलिया।

सगल मनोरथ तुम देवन हारा, भक्ति पाए परे पंडारा, दया तार राखे तुझ से ही, पूरे कर्म समावणिया, अंध कूप ते कंड है चाड़े, कर कृपा दास नदर निहाले, गुण गावह पूर्ण अभिना

मन तन अंतर तुद नजर निहाली। तू मेरा मीत साजन मेरा स्वामी, तुद बिन अवर न जानने। जिस को तू प्रभ

मंगिर माहे सोहंदियां हर तिर संग बैठड़ियां तिन की सो भाक्या गणी जे साहिब मेलड़ियां तन मन मौलिया राम स्यों संग साध सहेलड़ियां।

सुख सुहंदा सर्व सुख जिस बख्शे परवाह माघ मज्जन संग साधुआ धूड़ी कर इशनान हर का नाम त्याय सुन सबनानो कर दान जन्म का

मर जाती। गुरमुख रंग चलू लिया रंग हर रंग राती, सो सेव हो सत निरंजनो हर पुरख बिधाती। तू आप सुजान है वट पुरख बिडाती।

जिसनों नदर करे तिस देवै, नानक गुरमुख रतन सो लेवै पौड़ी। भगतां तै संसारियां जोड़ कदे ना आया, करता आप अभुल है ना।

सोई बुझाए जिस आप सुझाए तिस सब किछ सूझे कह कह कथना माया लूझे हुक्मी सगल करे आकार आपे जाने सर्व विचार अखर नानक अखियो आप लह प्रांत होवे जिस दात पौड़ी।

मैं बन जारण राम की तेरा नाम वखरवा पार जी रहाओ कोकिल होवा अंब बसा।

भगत करह मूर्ख आप जनाव है, नच नच टप है बहुत दुख पाव है। नचया टपया भगत ना होए, शब्द मरै भगत पाए जन सोए। भगत वश

है। इस जुग में राम नाम निस्तारा, बिरला को पाए गुर शब्द विचारा, आप तरह सगले कुल उधारा, इस काल युग में।

बरसत है क्या धरती मध्य पानी नाही। जैसे धरती मध्य पानी पर गासया बिन पगा बरसत फिराही। बाबा तू ऐसे भरम चुकाही जो किश करता।

गुरमुख नाम निधान लय दरगाह लय छाए रहाउ। लख चौरासी परम दे मन हठ आवै जाए, गुर का शब्द न चीन्यो फिर जो नहीं पाए। गुरमुख

मुरारा शिव शक्त मिटाइया चूका अंधियारा तुर मस्तक जिन कौ लिखिया तिन हर नाम प्यारा हर कित बिद पाई संत जन हो जिस देख हों जीवा हर बिन चसा ना।

तार भौजल अकथ कथा सुन हर की। गोविंद सत्संगत में लाए, हर रस रसना राम गुण गाए रहाओ। जो जन त्याव है हर हर नामा, तिन दासन दास करो हम रामा। जन की सेवा उत्तम कामा, जो हर की हर कथा।

बिन सजाए कूरा कच पाचा, जन नानक प्रीत तृप्त गुर साचा, गौड़ी ग्वारे री महला चौथा। सतगुर सेवा सफल है बनी, जित मिल हर नाम ते आया हर तनी, जिन हर जपया।

तावत पंच रहे हर त्याया, आन दिन नगरी हर गुण गाया। सतगुर पग धूर जिन्ना मुख लाई, तिन कूड़ त्यागे हर लिव लाई। ते हर दरगाह मुख उजल पाई, गुर सेवा आप हर भावै। कृष्ण बल भद्र गुर पग।

हर नाम मन चित नित त्यावहो जन नानक जो अंति अवसर ले छाया गौड़ी बैरागण महला चौथा जिस मिले मन हुए आनंद सो सतगुर कहिए।

हर नाम हर हर जग हर हर जग अवखद हर हर नाम हर हर जग अवखद हर हर नाम हर साते तिनके पाप दोख सब बिनसे जो गुरमत राम रस खाते जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक

हम मूड मुगध अशुद्ध मत होते गुर सतगुर कै बचन हर हम जाने रहाओ। जितने रस अनरस हम देखे सब तितने फीक फीकाने हर का नाम अमृत रस चाखिया मिल सतगुर मीठ रस गाने। जिनको गुर सतगुर नहीं भेटिया ते साकत मूड देवाने तिनके कर्म हीन तुर पाए देख दीपक मोह पचाने। जिनको तुम दया कर मिलो ते हर हर सेव लगाने जन नानक हर हर हर जप प्रगटे।

गुर ज्ञान गुरु लिव लागे, अज्ञान अंधेरा बिनस बिनासियो, घर वस्त लही मन जागे, साकत बद्धक माया धारी, तिन जम जोहन लागे, उन सतगुर आगे सीस ना बेचया, ओए आवह जाहे अपागे, हमरा बिनो सुनहु प्रभ ठाकुर, हम

सब सतगुर आगै जिन विछड़िया हर गल लाया मेरे अंतर प्रीत लगी देखन को गुर हिरदे नाल दिखाया सहज आनंद।

पुर पुरख अजन्मा वडभागी मिल रामा। गुरजोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो, गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्बाणी जियो। वडभागी मिल सुगड़ सुजानी जियो, वडभागी

मिल पूर्व लिखियड़े तुर करमा सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो मन मोर कोह केड़ा शब्द मुख पाया जियो मन

सिर ऊपर ठाडो धर्म राय, मीठी कर कर बिखिया खाए। हो बंधो हो साधो बैर, हमरी भूम कौन घाले पैर।

गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा जिस मन वसै तरै जन सोए जाकै कर्म प्राप्त होए।

पांख मिल साधु शरण कहो पूर्ण राम रतन हियरे संग राख रहाओ। भ्रम की कोई कृष्णा रस पंकज अत तीक्षण बोह की फास अत तीक्षण बोह की फास काटन हार जगत गुरु।

लाथी भूख तृष्ण सब लाथी, चिंता सगल बिसारी, कारमस्तक गुर पूरे तहरे ओ, मन जीतो जग सारी, तृप्त अघाए।

कठिन क्रोध कट ही के पीतर जिहे सुध सब बिसराई रतन ज्ञान सब को हिर लीना ता स्यों कछ न बसाई जोगी जत

सिमर सिमर कसमल सब हर रे, मानस देहे ना मानस देहे बहुर नह पावे, मानस दे बहुर नह पावे, कशु कशु उपाओ मुक्त का कर रे, मानस दे बहुर नह पावे, कशु उपाओ मुक्त

सहावों रिद सिद्ध बुलावों ताज कुल है सिर छतर बनावों बिन जगदीश कहां सच पावों खान मलूक कहावों राजा अबे तबे कूड़े है पाजा अबे तबे कूड़े है पाजा बिन गुर शब्द न सब

सहज घर आवहे, राजन जान परम गत पावहे, सच करनी गुर भरम चुकावै, निर्भउ कै कर ताड़ी लावै, हों हों कर मरना क्या पावै, पूरा गुर भेटे सो चगर चुकावै।

सेवा गुर चरणी मन ते मन मानिया चूकी अहं भ्रमणी इन बिद कौन कौन नहीं तारिया हर जस संत भगत निस्तारिया प्रभ पाए हम अवर ना पारिया साच महल गुर अलख लखाया निहचल महल नहीं छाया माया साच संतोखे परम चुकाया जिन कै मन वस्या सच सोई तिन की संगत गुरमुख होई।

जन पूरा तित कट अनहत बाजे तूरा जो जन राम भगत हर प्यार से प्रभ राखे कृपा तार जिनकै हृदय हर हर सोई तिनका दर्श परस सुख होई सर्व जिया मह एको रवै।

आत्म सुख तारा हित उतरा खो दीन दयाला तौ शरणागत नदर निहाला रहाओ जह देखो तह रव रहे रख राखन हारा तू दाता भुगता तू है तू प्राण अधारा किरत पया अद ऊर दी बिन ज्ञान बिचारा बिन उपमा जगदीश की बिन सैना अंधियारा जग बिन सत हम देखया लोभे अहंकारा गुर सेवा प्रभ पाया सच मुक्त द्वारा निज घर महल अपार को अपरंपर सोई बिन शब्द थिर को नहीं बूझे सुख होई।

पहला गुर प्रसादी बूझले तो हुए निबेरा, कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा, बिन गुर शब्द न

हे परमाया गुर कृपा ते बुझिए सब ब्रह्म समाया। राग गौड़ी ग्वारेरी महला तीजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन का सूतक दूजा पहाओ परमे फूले आवो जाओ। मन मुख सूतक कबह न जाए।

आए। गुरमुख कर्म धर्म सच होई, गुरमुख अहंकार जलाए दोई। गुरमुख नाम रते सुख होई, अपना मन पर बुद्ध हो बूझो सोई। लोक समझावहो सुने ना कोई, गुरमुख समझहो सदा सुख होई।

मोह अत परम पुलहाई, बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई, नाम रत्ते सदा बैरागी, गृह अंतर साच लिव लागी, नानक सतगुर सेव है से बडभागी। गौड़ी महला तीजा, ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा।

पाए जम डंड सह है सदा दुख पाए जमुआ ना जो है हर की शरणाई होमे मार सच लिवलाई सदा रहे हर नाम लिवलाई।

मन कर हला सतगुर पुरख ते आए रहाओ, मन कर हला विचारिया हर राम नाम ते आए, जिथे लेखा मंगिए हर आपे लै छाए, मन कर हला अत निर्मला।

पंजवा अष्टपदियां एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। जब एहो मन मह करत गुमाना तब एहो बावर फिरत बिगाना। जब एहो हुआ सगल की रीना ता तेर मैया कट कट चीना सहज सु

तब इसको है मुश्किल भारी, जब इन करने हार पछाता तब इसनो नाही किछताता, जब इन अपनो बांधियो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा, जब इसते सब बिन से परमा भेद नाही है पार ब्रह्मा, जब इन किश कर माने भेदा तब ते दुख डंड अरखेदा, जब इन एको एकी बूझया तब ते इसनो सब किश सूझया, जब एहो तावे माया अर्थी न तृप्तावे न तिसलाथी, जब इसते एहो होयो जौला पीछे लाग चली उठ कौला, कर कृपा जो सतगुर मिलियो मन मंदिर मह दीपक जलियो, जीत हार की सोजी करी तो इस कर की कीमत परी, करन करावन सब किश एक।

दिन सबेताला गिर तर धरण गगन अर तारे रव सस पवन पावक नीरारे दिन सरैन बरत अर भेदा शास्त्र सिमरत।

लोगा जात वर्ण तुर्क अर हिंदू पश पंखी अनक जोन जिंदू सगल पसार दिसै पासारा विनस जाए गो सगल आकारा सहज सिफत भगत तत ज्ञाना सदा आनंद निश्चल सच थाना तहां संगत साध गुण रसै अन पौ नगर तहां सद वसै तह पौ परमा सोग ना चिंता आवन जावन मृत ना होता तह सदा आनंद।

साध संग तरै गौड़ी महला पंजवां जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिस है वड्याई।

जो इस मारे तिस कौ पहो नाहे, जो इस मारे सो नाम समाहे, जो इस मारे तिस की तृष्णा बुझे, जो इस मारे सो दरगह सिजहै, जो इस मारे सो तनवंता, जो इस मारे सो पतवंता।

हर का दास नीच कुल सुन है, तिसकै संग खिन मह उदर है। कोट मजन जा कह सुन नाम, कोट पूजा जा कह है ध्यान। कोट पुन